0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
3: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 16 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5 बज रही है।
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. संडे की एक बहुत ही प्यारी सी सुबह है और आप सुन रहे हैं Chillax सिर्फ रेडियो मस्ती पर. 5:06 हो रहे हैं और अगर आप अभी तक अपनी नींद

0: बॉयफ्रेंड और कंबल के बीच निगोसिएशन कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। संडे है भाई, वीकेंड का आखिरी दिन, कैसे फिर वही मंडे, वही रूटीन, वही अलार्म, वही बस 5 मिनट और। लेकिन आज सुबह हम कहीं भाग नहीं रहे, आज सुबह थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा सांस लेंगे और थोड़ा यादों के शहर में घूमाएंगे, क्योंकि रिलैक्स का पहला घंटा सिर्फ सदाबहार गाने के नाम हम रखते हैं। वो गाने जो सिर्फ गाने नहीं है, किसी के लिए बचपन है, किसी के लिए कॉलेज के दिन, और किसी के लिए पहली मोहब्बत, और किसी के लिए बस एक ऐसी याद जिसका कोई नाम नहीं होता। कभी कभी एक पुराना गाना बजता है और हम अचानक सोचते हैं, अरे ये गाना तो मैं इतने सालों बाद सुन रहा हूँ, और झट से इतनी सारी यादें उमड़ कर आ जाती है। और फिर गाना ख़त्म होने के बाद भी कहानी चलती रहती है, चलती रहती है। तो आज सुबह रेडियो की आवाज़ थोड़ी धीमी यहाँ पर रखिए, चाय या कॉफ़ी का कप हाथ में लीजिए और अलाउ कीजिए इन सदाबहार गानों को अपनी मेमोरी लेन पर ले जाने का। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी ही रिया, और आज तो बहुत ही खूबसूरत गाने हम लेकर आए हैं, तो साथ निभाते चलिए। दिस इज योर रिलैक्सर शो, मेरे साथ है। आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294
1: विद रेडियो मास्टी, योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: Tracks with Radio Musty. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ गाने हमें उनके लिरिक्स से ज्यादा उनके साथ जुड़ी यादों की वजह से याद रहते हैं? एक गाना सुना और बस आंखों के सामने एक पुरानी पिक्चर चल पड़ती है। किसी को स्कूल का असेंबली ग्राउंड याद आ जाता है, किसी को कॉलेज की कैंटीन, किसी को वो पुराना घर और किसी को कोई ऐसा इंसान जो कभी बहुत ही करीब था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है कि हम कितनी भी बड़े हो जाए, कुछ गाने हमें फिर से वही बना देते हैं जो हम कभी हुआ करते थे। और आज का ये पहला घंटा इसलिए स्पेशल है, नो रश, नो मंडे की टेंशन, बस पुराने गाने और पुरानी यादें। तो अगर आपके घर में अभी सब सो रहे हैं, वॉल्यूम आप थोड़ा कम ही रखिए, लेकिन अगर आप अकेली ड्राइव कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर है या चाय बना रहे हैं, तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर कोई खास याद आ रही हो या आ रहा हो तो उसे जाने मत दीजिए, कुछ यादें बार बार याद करने के लिए ही तो होती है। चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हम लेकर आए हैं आप सभी के नाम, एंड यस, आपके डेडिकेशंस की ओर हम थोड़ी देर में ज़रूर बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो थोड़ी देर बाद तभी एक गाना सुन लेते हैं।
1: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: संडे मॉर्निंग का अपना अलग ही मूड होता है. वीकडेज में अलार्म बजता है और हम अलार्म को ऐसे देखते हैं जैसे उससे हम हमारी कुछ पर्सनल दुश्मनी सी है. लेकिन संडे को अलार्म भी जब बजता है तो दिल हमारा कहता है कि आज रहने दो, दुनिया कल हम संभाल लेंगे. और शायद इसलिए संडे की सुबह हमें एक अलग सी मिठास होती है. तो आज ना कहीं जल्दी पहुंचना है, ना हर मिनट का हिसाब रखना है, बस धीरे धीरे सुबह को जागते हुए देखना है. और इस समय अगर आप खिड़की के पास बैठे हैं, बाहर की जो एटमॉस्फेयर का वातावरण है ये आप देख रहे हैं, तो आप चाय की जो पहली सिप ले रहे हैं तो इसके साथ जिंदगी को भी अच्छे से जिए. जी हाँ, हर एक पल को जिए. तो चलिए यहाँ पर हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मैसेजेस वी हैव. सबसे पहले व्हाट्सएप की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सायरा पानू जी और अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नसरीन के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं. ऑलराइट, तो हम ज़रूर गाना डेडिकेट करते हैं उनके नाम. और यहाँ पर बबीता जी हैं बनाकर ऐसे साथ दे रही है. कैसी हैं आप बबीता जी? आई होप सब ठीक ठाक. वैसे यहाँ पर आप कह रही है कि कई साल बाद नानी बनी हूँ मैं. दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़, सो कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाइयाँ. और आपकी बेटी सिमरन को बेबी बॉय क्या हुआ है. दैट्स लवली टू हियर, बहुत ही अच्छी खबर दी आपने. तो आपके घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, बस हम यही प्रार्थना करते हैं. एंड वी हैव बॉम्बू से धनेश्वर जी और आपकी प्यारी पत्नी है सुनीता, साथ में द होल दावेदोस परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट हम करते हैं. सभी को विश करते हैं टू हैव अ ग्रेट संडे एंड बुक कुहाज, स्पेशली जो लोग काम पर जा रहे हैं. जी हाँ, संडेज के दिन भी लोग काम पर जाते हैं, उनको हम बुक कुहाज कहते हैं. जयशन जी, गुड मॉर्निंग आपको एंड वेरी हैप्पी संडे आपको भी. वीकेंड का आखिरी दिन है, इसे हैप्पी हैप्पी ही रखना चाहिए. एंड यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ श्रिया जुड़ी हुई है. श्रिया आप है कॉलर मास्क से और फुल ऑन साथ निभा रही है. आपको इस नभर गाने

0: बहुत ही पसंद आ रहे हैं, तो नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम भी जाता है।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी घड़ी आप मिलाते चलिए, 6:45 बज रहे हैं। समय हो चला है आपको बताने का कि आज का दिन आपके लिए कैसे कटेगा, क्योंकि इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। किसी पुराने काम को पूरा करने का अच्छा मौका मिलेगा। घर परिवार में किसी अपने के साथ अच्छा समय जरूर बीतेगा और काम से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपका मन खुश कर सकती है। लेकिन बढ़ है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज मन थोड़ा शांत और हल्का महसूस करेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस काम को लेकर चिंता थी उसमें सुधार आएगा। परिवार के साथ बैठकर बातें करने का अच्छा समय है। पैसों से जुड़े मामले में सोच समझ कर कदम उठाना बेहतर रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,

0: आज का दिन बातचीत और मेल मिलाप के लिए अच्छा रहेगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। आपकी कोई बात सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप अच्छी तरह निभाएंगे। आज आपका लकी नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज घर का माहौल आपको सुकून देगा। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। काफी समय से अधूरा पड़ा कोई काम आज पूरा होने की उम्मीद है। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा कर सकते हैं। आज दूसरों की चिंता से ज्यादा थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। लकी नंबर है आज आपका 2।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। किसी काम में मिली छोटी सी सफलता भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। घर में आपकी बात का महत्व मिलेगा और आपकी बात को महत्व मिलेगा और किसी खास व्यक्ति से जुड़ी बातचीत आपका दिन और अच्छा बना सकती है। बस अपनी बात रखते समय या सामने वाले की भावनाओं को भी ध्यान रखें और लकी नंबर है आज आपका 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज का दिन आराम और अपने लोगों के साथ समय बिताने के लिए अच्छा है। मन में चल रही कई बातें धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम मिल सकता है और घर के किसी सदस्य से मिली सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। किसी पुराने मतभेद को बातचीत से दूर करने का मौका मिल सकता है। काम को लेकर भी कोई अच्छी शुरुआत हो सकती है और आज आपका शांत स्वभाव दूसरों को बहुत ही पसंद आएगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज का दिन आपको अपने फैसलों पर भरोसा करना सिखाएगा। जिस काम को लेकर आप कुछ समय से सोच रहे थे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। परिवार से पूरा सहयोग आपको मिलेगा और किसी पुरानी परिचित से अचानक बातचीत हो सकती है। बस गुस्से में कोई बात कहने से बचे क्योंकि शब्दों का असर लंबा रहता है। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज मन में नई उम्मीद और नई सोच रहेगी। परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है। काम में किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है और आज किसी अपने की कही हुई बात आपको नई प्रेरणा देगी। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संकेत है। किसी जरूरी काम में परिवार कि बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। घर में कोई अच्छी खबर आने से खुशी का माहौल बन सकता है। पैसों के मामले में आज संभल कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज मन में कुछ नया करने का विचार आ सकता है। आपकी सोच और मेहनत किसी काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्त या परिवार का कोई व्यक्ति आपका साथ देगा। पुरानी चिंता को पीछे छोड़कर आज की खुशियों पर ध्यान दीजिए। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज का दिन भावनाओं और अपनों की नाम रहेगा। किसी खास व्यक्ति से दिल की बात करने का मौका भी मिल सकता है। पुरानी यादें आपको थोड़ा भावुक करेंगी लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी लाएंगी। काम के मामले में धैर्य रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 2। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए तो रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
2: Your daily horoscope. RM2. Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है संध्या। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया। 16 अगस्त 2026 की इस प्रातकालीन समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को प्रणाम और नमस्ते। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करते हैं। भारत के 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। कल मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित मॉरिशस के राजनीतिक व राष्ट्रसभा के सदस्यों ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। यह अवसर रहा भारत मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा मनाने का। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सोमवार को होने वाले सादेक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां क्षेत्रीय एकीकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए जहाज निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट यानी फारे के विलय का किसानों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उनका

0: कहना है कि इस फैसले से करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हो सकती हैं। पाई से वालीपीतियों को जोड़ने वाली बस लाइन रूट 105 की सेवा को लेकर 500 निवासियों के एक समूह ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। निवासियों का आरोप है कि समय सारिणी का पालन नहीं हो रहा है और पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कर्मचारी, विद्यार्थी और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। और मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस साल अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और मॉरिशस में विदेशी फिल्म निर्माण को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 47 लोगों की मौत हो गई है और फ्लोरेस टापू में आए भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए और सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उधर दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इजरायल ने हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाने की बात कही है। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है। आज पूर्व की ओर से आने वाले बादल आज शाम से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आमतौर पर सुबह के समय और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर दोपहर में पूर्व में कुछ बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। शाम के समय और रात के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्वी तथा दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर विशेषकर कोहरा छाएगा और हवा सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हल्की बहेगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दिन के दौरान बहेगी और खुली जगहों में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है तथा लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। दक्षिण और उत्तर के लगूनों में शाम के समय सुधार आएगा और तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ऊंचाइयों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
0: तो इसके साथ ये पहला फ्लैश समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 आज्ञा दीजिए। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

वंस अगेन गुड मॉर्निंग आप सबको, सुप्रभात। घड़ी में अभी बज रहे हैं 6:10 और आप सुन रहे हैं रिलैक्स ऑन रेडियो मस्ती। पहले घंटे में हमने पुराने और सदाबहार गानों के साथ खूब यादों की सैर की, कभी किसी पुराने पल में गए, कभी किसी चेहरे को याद किया हमने, और कभी बस चुपचाप उन धुनों को महसूस किया। लेकिन अब जरा सा रंग बदलते हैं। अभी अभी आपने सुना पिया बसंती रे, और इसके साथ ही सुबह में जैसे थोड़ी और मिठास खुल गई है। अब इस दूसरे घंटे में सिर्फ पुराने गाने नहीं बल्कि नए और पुराने हल्के और सुरीले गाने सब कुछ होने वाले हैं, यानी ये मिक्स गाने हम लेकर आए हैं आपके नाम दिस आवर। क्योंकि संडे की सुबह को हमेशा तेज संगीत की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक धीमी धुन, एक प्याली चाय, खिड़की से आती हल्की हवा और रेडियो की आवाज, बस इतना ही काफी होता है। और अगर आप अभी अभी उठे हैं तो बहुत जल्दी मत कीजिए। अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय को थोड़ा आराम से बनने दीजिए, और अगर आप अभी भी बिस्तर में हैं तो कोई बात नहीं, संडे है, सब बनता है। और आज की सुबह को हम थोड़ा अपने हिसाब से जीते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपके रिया, और

0: बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर आई हूँ आपकी सेकंड आवर में, चिलैक्स के सेकंड आवर में। तो साथ आप निभाते चलिए और गाने एंजॉय करते रहिए। नॉट टू फॉरगेट आपकी डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: चिलैक्स विद रेडियो मास्टी,
2: योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: Chillax with Radio Musty.
1: संडे की सुबह और गर्मा गर्म चाय, इन दोनों की दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। कुछ लोग चाय के बिना सुबह शुरू ही नहीं करते, जैसे कि मैं, और कुछ लोग चाय लेकर बैठते हैं फिर तय करते हैं कि अब उठना है या थोड़ी देर और बैठना है। लेकिन आज की सुबह में एक चीज़ और जोड़ दीजिए, एक अच्छा सा गाना, क्योंकि संगीत का भी अपना असर होता है। कभी कोई गाना मन को शांत करता है, कभी कोई गाना बिना वजह मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, और कभी कोई धुन ऐसी होती है जिसे सुनकर लगता है कि हाँ, आज सुबह कुछ अच्छा सा है। और आज रिलैक्स में हम इसी एहसास को बनाए रखेंगे, ना बहुत तेज ना बहुत भारी, बस ऐसे गाने जो आपके संडे को थोड़ा और खूबसूरत बना दे। वैसे अभी अभी हम बाहर झांककर देख चुके हैं कि बाहर अब तक रोशनी दिखाई नहीं दे रही, बट यू नो दैट रोशनी दिखाई देगी, ज़रूर दिखाई देगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद, लेकिन दिखाई तो ज़रूर देगी। बट अभी इस मोमेंट को हम जीते हैं, जैसे कि मौसम बाहर है, ठंड लग रही है और अभी तक अंधेरा छाया हुआ है, तो कुछ ऐसे ही गाने हम चलाएंगे जिससे मूड भी मेंटेन रहे, अच्छा मूड। सो यस, यहाँ पर हम एक एक गाना चुनकर लाते हैं आपके नाम, ताकि आपका ये संडे, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। कुछ सॉफ्ट गाने आपके दिल को और भी नरम नरम रखने के लिए। तो यस, यहाँ पर आप एंजॉय कीजिए कुछ भी आप कर रहे हैं। अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय का जो प्रोसेस, बनने का प्रोसेस है, ये आप एंजॉय कीजिए। अगर चाय पी रहे हैं तो ये भी आप एंजॉय कीजिए, गाने एंजॉय कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। एंड यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे, और अगर इस आवर में पॉसिबल नहीं हो पाए तो हम नेक्स्ट आवर ज़रूर आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे। सो यस, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे रिया की ओर से।
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.
1: चलिए सोच रहे हैं कि एक दो मैसेजेस हम देख ही लेते हैं। देवानंद, बबीता, दर्शनी, कृष्ण, नकुल, एंड्रिया के नाम गाना जाता है। हैप्पी संडे विश करते हैं देवानंद जी सभी को। साथ ही वी हैव जाना जी जो है फ्लैग से, और आपकी बेटियों के नाम ये गाना हम जरूर डेडिकेट करते हैं। द होल शिव सरन परिवार फ्लैग से साथ निभा रहे हैं, तो फ्लैग की ओर हम बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं।

16 अगस्त रविवार का दिन, इस प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज की सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत की 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित मॉरिशस के राजनीतिक और राष्ट्रसभा के सदस्यों ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। ये अवसर रहा भारत मॉरिशस

0: बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा मनाने का। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सोमवार को होने वाले सादिक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां क्षेत्रीय एकीकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए जहाज निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फारे के विलय का किसानों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। फॉरेस्ट टापू में आए भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए और सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल फिनिक्स स्थित इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी रही और भारत तथा मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेष संबंधों को रेखांकित किया गया। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त ने हाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भारत यात्रा का भी उल्लेख किया। इन उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर सुनते हैं ये विवरण।
1: This is not only a celebration of our Independence Day, it is a celebration also of our special friendship with Mauritius. A friendship which has grown stronger, a friendship which is very robust, it is time tested, and a friendship where we are committed to take to even greater heights in the times to come.
0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय उच्चायुक्त को श्रीमान श्रीवास्तव को। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी यानी सादेक के 46वें साधारण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कल सोमवार 17 अगस्त को करेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि क्षेत्र में बदलाव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस वर्ष 1995 से सादेक का सदस्य है। मॉरिशस का लक्ष्य दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को और मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन के अंतर्गत प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में क्षेत्र के साझा मुद्दों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इस पर करुणा लालू का विवरण।
2: सोमवार सुबह होने वाले आधिकारिक उद्घाटन से पहले 16 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करने वाले स्थल पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण तथा विकास को और भी मजबूत करना है।
3: Sa régional intégration là et surtout continental integration. Par exemple, au niveau UA, ils peuvent venir de l'avant avec un modèle laws and everything qui s'adapte pour bien implémenter. Et même aussi pour bien réimplémenter pour derrière. Donc, il y a un bon suivi.
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम रविवार को डर्बन पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर उन्हें अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जहां साझा हितों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार भी शामिल हैं।
4: En ce qui concerne Maurice, nous causons surtout leur sécurité alimentaire. Il y en a aussi différents corridors qu'il peut faire au niveau de la SADC. Il y en a un chemin qu'il peut faire pour connecter un État membre à travers un projet routier, mais aussi nous causons le corridor maritime qui

0: connecter Bandil de la SADC, Maurice, Seychelles, Madagascar, etc.
1: प्रत्येक सदस्य देश से जुड़े मुद्दों से आगे बढ़कर इस शिखर सम्मेलन को क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में साझा चुनौतियों और क्षेत्र की प्रगति को तेज करने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
2: मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। मत्स्य मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार क्षेत्र में अवैध बिना सूचना की और अनियमित रूप से की जाने वाली मछली पकड़ने की गतिविधियों से हर साल $5 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है और अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने कल शुक्रवार 14 अगस्त को फिशरीज वेसल मॉनिटोरिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मंजूरी दी, यानी कि शुक्रवार को ये फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य जहाजों की निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मंत्री अरविंद बुलेल से बात की शैली नियाबन ने, विवरण तीना बुद्धा का है।
3: यो फिशरीज रिसर्च सेंटर, येरा एंड फिशरीज मॉनिटरिंग सेंटर।
4: अल्बियो फिशरी रिसर्च सेंटर में एक फिशरीज मॉनिटरिंग सेंटर है। वहाँ लाइसेंस वेसल्स की निगरानी की जाती है और इन जहाज़ों में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है। इसलिए चाहे जहाज हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हो या बाहर, हम ये पता लगा सकते हैं कि जहाज इस समय कहाँ है। एक बड़ी समस्या गैर कानूनी और बिना नियम के होने वाली मछली पकड़ने की है। इस समस्या को रोकने के लिए कई कन्वेंशंस है और मॉरिशस स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। सादेक के कोस्टल देशों में हर साल $5 बिलियन से अधिक की राशि इस तरह की गैर कानूनी फिशिंग के कारण खो जाती है।
2: ये उल्लेखनीय है कि मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी पोर्ट निगरानी प्रणाली VMS 2005 से मौजूद है। ये नया सुधार इस प्रकार फिशरीज एक्ट 2023 के तहत 2024 में मजबूत किए गए नियामक ढांचे का पूरक है, जिसमें विशेष रूप से VMS स्वचालित पहचान प्रणाली यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली भी शामिल है। मेलहोस जेल में 43 वर्षीय कैदी अविनाश रामगुती की मौत फांसी लगने से दम घुटने के कारण हुई थी। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर्स सुदेश कुमार गंगादीन और प्रेम चमन द्वारा कल किए गए पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि की है। अविनाश रामगुती को कल सुबह मेलहोस स्थित उसकी कोठरी में मृत पाया गया था। वह वर्ष 2006 में लालमाटी में दो भाभियों इंदिरा और आशा जरी की दोहरी हत्या के मामले में 37 साल की जेल की सजा काट रहा था। मुकदमे के दौरान उसने इस अपराध में अपने चाचा राजेश रामलोगन को भी शामिल बताया था। राजेश रामलोगन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस की कथित बर्बरता का आरोप लगा था। इस मामले में MCIT के 3 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था। करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फाहे के प्रस्तावित विलय यानी फ्यूजन से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने इस विलय का विरोध करते हुए ये चिंता जताई है। दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि फाहे मुख्य रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसानों के प्रतिनिधियों के अनुसार फ्यूजन से कृषि परिवारों को मिलने वाली सामाजिक सहायता कमजोर हो

0: सकती है और अनुसंधान गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है। उनका सुझाव है कि दोनों संस्थाओं को बरकरार रखा जाए, उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग की जाएं और कार्यों में दोहराव से बचा जाए। किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से किसी भी फैसले से पहले किसानों से परामर्श करने की मांग की है। इस बारे में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसल्टेंट अमरजीत बीगू छोटे किसानों और पशुपालकों की ओर से अपनी बात रख रहे हैं। विवरण टीना बुद्ना का है।
1: फारे और स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड को मर्ज करना जब दोनों का काम बिल्कुल अलग है, इससे बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। अभी किसान लोग खुद परेशान हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड में सालों से किसान लोगों की तरफ से लगभग 50 मिलियन रुपए जमा किए गए हैं। अब सवाल है कि उन पैसों का क्या होगा? क्या अब किसान लोगों को रिसर्च के लिए भी पैसा देना पड़ेगा? जो पैसा अब तक जमा हुआ है उसका क्या होगा? क्या वो पैसे किसान लोगों को वापस दिए जाएंगे? इन सब बातों को लेकर हम लोग बहुत उलझन में है। बजट में भी प्रधानमंत्री ने फारे और स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड को मिलाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। फाइनेंस बिल में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मंत्री अरविंद बुलेर के बयान में सुना गया है कि स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड फारे के नीचे काम करेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को फिर से देखा जाए। ये दोनों अलग अलग अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं और दोनों का काम भी अलग है। हम चाहेंगे कि दोनों संस्था जैसे अभी है वैसे ही रहे। कम से कम किसान लोगों को पता रहेगा कि कोई दिक्कत होने पर किस जगह जाना चाहिए।
0: डिजिटल लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीमाओं व सुरक्षा पर जागरूकता अभियान जारी है। इस सिलसिले में अधिकारी जीतोर मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी शिक्षा मंत्री महीन गंगा प्रसाद हमें दे रही हैं। विवरण सुमेरा अकबर अली का है।
2: मॉरीशस के नौजवानों की हिफाजत करनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी के सिलसिले में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जब बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि वो किस हद तक जा सकते हैं और कौन सी सीमा पार नहीं कर सकते हैं, ताकि वो खुद के लिए या अपने माँ बाप के लिए कोई समस्या पैदा ना करें। हम टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल के लिए बच्चों को अवगत करने पर जोर देते हैं।
3: C'est un bon usage de la technologie qui nous est bien sûr. Et pour ça, nous visons sensibiliser nos bas enfants.
0: टेक्नोलॉजी और एआई के औजार के बारे में छात्रों को समझाना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। इस सिलसिले में मॉरीशस में करीब 50,000 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सके।
4: Aujourd'hui, il est important de permettre aux élèves d'apprendre les outils de la technologie et de l'intelligence artificielle. C'est fondamental.
2: आज बच्चों को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के औजार के बारे में जानने का मौका देना अहम है। बच्चों को रहनुमाई की जरूरत है। पढ़ाई में एआई अब बुनियादी चीज बन गई है। सभी तकनीकें इस पर सीखी जा सकती हैं, लेकिन बच्चों का अकेले एआई समझना अच्छा नहीं है। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय मॉरीशस में इसी मकसद से कम 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का इरादा रखता है। छात्र, अध्यापक, कर्मचारी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध रखने वाले लोग।
4: 50,000 personnes à Maurice, non seulement les étudiants, non seulement les profs, mais un peu les civil servants et tous ceux qui sont concernés par l'IA.
0: मॉरीशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MFDC इस साल अपनी स्थापना की 40 वर्ष पूरे कर रहा है। MFDC स्थानीय प्रतिभाओं की को समर्थन देने के साथ साथ विदेशी फिल्म निर्माण को मॉरीशस में आकर्षित करने के लिए भी काम करता है। इस वर्ष और अगले वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अपनी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर MFDC सिनेमा द विलास कार्यक्रम भी आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य मॉरीशनों को स्थानीय फिल्मों और फिल्म निर्माण से परिचित कराना है। इस बारे में MFDC की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन गती ने गुरुवार को लेटेव्यू दुला मचनाल के दौरान ये जानकारी दी। उनको सुनते हैं। विवरण टीना बुन्ना का है।
5: सिनोकोस फिल्म मॉरीशस दिपारे कुमार मिजिक

0: अगर हम मर्शन फिल्म की बात करें तो ये मर्शन म्यूजिक की तरह ही है। मर्शन कलाकार यहाँ से ज्यादा बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं, इसलिए लोगों को भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए समझाना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से संस्था के स्तर पर मदद कर सकती है, लेकिन हमें आम लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। लोग फिल्म देखने आए उसको पसंद करे और मर्शन फिल्म को सपोर्ट करें। इसी वजह से हम गांव तक सिनेमा ले जा रहे हैं। हम सीधा लोगों के पास जाना चाहते हैं, गांव में मर्शन शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहते हैं ताकि लोग इन फिल्मों को देख सकें, समझें और उनको पसंद करें। इस तरह हम जनता को इस इंडस्ट्री के करीब ला सकते हैं।
1: आपको हमें याद दिला देते हैं कि केविन गति से बात की राजमिला सीतामुनि ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में कल शनिवार तड़के 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार खोज और बचाव अभियान शुरू होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि कई लोग अलग अलग स्तर पर घायल हुए हैं। भूकंप और उसके बाद आए दर्जनों झटकों से इलाके में सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह पांच बजे से कुछ पहले फ्लोरेंस द्वीप में आया। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान और भू भौतिकी एजेंसी के अनुसार भूकंप की गहराई 15 किलोमीटर थी। विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप जितना कम गहराई में आता है सतह पर उसका प्रभाव उतना ही विनाशकारी हो सकता है। पूर्वी इलाके में इसके बाद कई शक्तिशाली झटके महसूस किए गए जिनमें 6.1 तीव्रता का एक भूकंप भी शामिल है। शनिवार को बाद में पश्चिमी इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में भी 6.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया जिसकी गहराई 163 किलोमीटर थी। मोमियर बंदरगाह से सामने आई वीडियो में टर्मिनल की इमारत से कंक्रीट के बड़े टुकड़े यात्रियों के ऊपर गिरते दिखाई दे रहे हैं। ये यात्री अंतरद्वीपीय फेरी में सवार होने का इंतजार कर रही थी। जहाज तक पहुंचने वाला गैंगवे ढहने के बाद कुछ लोग समुद्र में भी जा गिरे। और उधर लेबनन के बारे में बात करती है। दक्षिणी लेबनन में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और अधिकारियों के अनुसार जून में तनाव कम करने के उद्देश्य से समझौते की घोषणा के बाद ये हमलों के सबसे घातक दिनों में से एक है। लेबनन के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के अनुसार बेरूत से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण में अंसार के बाहरी इलाके में एक मकान पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक मृतकों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने हिजबुल्ला के एक कमांडर को मार गिराया है। इजरायल के अनुसार ये कार्रवाई उसके सैनिकों पर हुए एक हमले के बाद हुई। IDF ने यह भी कहा कि कमांडर के परिवार के सदस्य जिन्हें उसके मुताबिक वह मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था घटनास्थल पर मौजूद थे और वे भी प्रभावित हुए हैं। बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है और शाम के समय या पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जा रहा है कि सुबह के समय और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना होगा, सिवाय दोपहर देर में पूर्व में कुछ बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। शाम के समय और रात के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर विशेषकर कोहरा छाएगा। सुबह के समय हवा हल्की बहेगी और दिन के दौरान दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। खुले जगहों में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगी। खुले समुद्र में लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। शाम के समय धीरे धीरे समुद्र की स्थिति में विशेषकर पूर्वी और उत्तरी लगूनों में सुधार आएगी। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा

ऊंचाइयों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगियों शिव और अपर्णा का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। अल्बाट्रोस स्ट्रीट पॉइंट साब में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सैमोती गौरी रामनोत, जिन्हें राजकुमारी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन की 2:16 पर उनके घर पॉइंट साब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गिश्लोई की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:16 PM। क्लावेट रोड सेबास्टोपोल में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजो बंधु, पैदाश नाम हरी और जिन्हें राजो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे संजीव बंधु के घर सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 12:30 PM। बारात रोड लालमाटी में 43 साल की 43 ईयर्स ओल्ड की श्री अविनाश रामगोति, जिन्हें अश्विन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3 बजे उनकी माँ रामभवती कानिया के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजर गौदेमास की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। कालीमाई रोड मोसेलमो सैतंद्री में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रमेश जीवन, जिन्हें विनोद कादित के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे विकास जीवन के घर मोसेलमो सैतंद्री से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:01 PM। होल्डन एवेन्यू एल्विशा सैपिया में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री गोविंदा स्वामी मर्दे, जिन्हें प्लोगा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले जेल में बागबान थे, कि मृत्यु हो गई है। जेल में काम करते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनकी पत्नी सुरेखा मर्दे के घर एल्विशा सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 12:02 PM। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेती हैं। आवेन्यू इकबाल वाली पीटू में 79 साल की हफीज बीबी महादू, पैदाशी नाम नियामत खान और जिन्हें दादी हफेज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा इनके बेटे के मकान वाली पीटो से कल रात 8:30 बजे इनका जनाजा कल रात इनके बेटे के घर से वाली पीटो से रात 8:30 बजे उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल लॉसनाट एट 8:30 PM। एवेन्यू सदना कैट्रबोन में 51 साल की 51 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कविता रामचंद, पैदाश्याम राजवानी और जिन्हें सोनी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर सुदना कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फीगनियों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 12:01 PM। पैराडाइज लेन ओशनो में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री चितानन सांतक श्री

चितानंद संतक, जिन्हें फिया बुशों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर घोषणों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। कारियोलिस रोड 16000 फोरसाइड में, कारियोलिस रोड 16000 फोरसाइड में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्री धनेश्वर सिंह बालक, श्री धनेश्वर सिंह बालक जिन्हें कमलेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर 16000 फोरसाइड से उठाकर अंतिम संस्कार

0: हो गया। श्री मेगावेन मोहगिया, जिन्हें मायन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाह के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट नून। एमिलिया स्ट्रीट पुथोदो विलाज में, एमिलिया स्ट्रीट पुथोदो विलाज में 74 साल के 74 years old के श्री रामचंद्र बुलाकी, श्री रामचंद्र बुलाकी जिन्हें मिलात के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी पत्नी सालदा बुलाकी के घर पुथोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 10:30 AM। राय रोड कैथोकुकु में, राय रोड कैथोकुकु में 73 साल के 73 years old के श्री सत्यदेव मीतू, श्री सत्यदेव मीतू जिन्हें चंद्रदेव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो टैक्सी ड्राइवर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी प्रतिमा मीतू के घर कैथोकुकु से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 2 बजे लावोचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 2 PM। डिस्पेंसरी रोड विचामिल थ्रियोली में, डिस्पेंसरी रोड विचामिल थ्रियोली में 55 साल के 55 years old के श्री रविंद्रनाथ जयमंगल, श्री रविंद्रनाथ जयमंगल जिन्हें अखिलेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके घर विचामिल थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मैडम लुलू रोजबेल में, मैडम लुलू रोजबेल में 85 साल के 85 years old के श्री मुनय यापा पैदाश, श्री मुनय यापा जिन्हें सिमाद्री के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे रवि यापा के घर मैडम लुलू रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 11 AM। न्यू रोड रोशनो में, न्यू रोड रोशनो में 69 साल के 69 years old के श्री मथुरा प्रसाद गुदौ, श्री मथुरा प्रसाद गुदौ जिन्हें राजू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनकी पत्नी वेदवंती गुदौ के घर होशनौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11 AM। भुजावन रोड अपर दागोचिया में, भुजावन रोड अपर दागोचिया में 62 साल की 62 years old की श्रीमती उमा किस्तू, श्रीमती उमा किस्तू पैदाश नाम निर्मल और जिन्हें उमा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर भुजावन रोड पदागुजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकमोसा सैफिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 10 AM। राय रोड विचामिल थ्रियोली में, राय रोड विचामिल थ्रियोली में 65 साल के 65 years old के श्री शांति देव रामेसर, श्री शांति देव रामेसर जिन्हें जय सिंह के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर विचामित खियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी खियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 10 AM। कश्मीर रोड लेस्पेरेंस ट्रिबुशे में, कश्मीर रोड लेस्पेरेंस ट्रिबुशे में 49 साल के 49 years old के श्री ऋषिदेव बोयरब, श्री ऋषिदेव बोयरब जिन्हें ऋषि के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी माँ रूपा बोयरब के घर लेस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Radio Musty. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2, Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. The Musty.
3: गुड गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। घर मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 7:01।

गुड मॉर्निंग सभी को, 7:10 तो नहीं हुए, 8 मिनट ही हुए हैं यहाँ पर और संडे की सुबह है और अब समय है उन टाइमलेस गानों का क्योंकि इट्स टाइम फॉर टाइमलेस तड़का रेडियो मस्ती पर। रिलैक्स के पहले 2 घंटों में हमने सुबह को धीरे धीरे जगाया, कभी सदाबहार गानों के साथ तो कभी सॉफ्ट और सुकून भरी धुनों के साथ संडे को फील किया। लेकिन अब थोड़ा तड़का लगाना तो बनता है, लेकिन let me tell you that ये तड़का उतना मसालेदार तो अभी नहीं होगा, but it's gonna be very beautiful। आपको ये आवर बहुत बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि आप ही के फेवरेट गाने हम लेकर आते हैं इन योर टाइमलेस तड़का। वो गाने जो बस ऐसे ही अगर आप सुन ले तो लगे कि दिन तो आज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कभी रोमांटिक का, कभी मस्ती भरा, हर रॉ के गाने हम लेकर आए हैं। वैसे 1-2 डांस वाले गाने भी हम लेकर आएंगे, बट अभी नहीं, बाद में ज़रूर चलाएंगे। बट फॉर नाउ आप एंजॉय कीजिए ये संडे फील गुड वाले गाने। 1-2 गाने हमारे फेवरेट है, 1-2 गाने आपके फेवरेट है। आई नो कि सबको बहुत ही पसंद आएगा, मतलब गाने अलग अलग, मूड एकदम मस्त। संडे की सुबह का ये वो समय है जब घर धीरे धीरे जागना शुरू करता है, कोई चाय लेकर बैठता है, कोई ब्रेकफास्ट की तैयारी में है, कोई मॉर्निंग वॉक पर है और कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि संडे है भाई थोड़ा और सोने दो। जो भी कर रहे हैं बस रेडियो मस्ती को साथ रखिए। मैं हूँ आपके साथ आपके रिया और अगला सफर है टाइमलेस तड़का का। आज के इस म्यूजिकल मिक्स में हर रंग मिलेगा आपको और एक चीज कॉमन होगी, इट्स गुड म्यूजिक। तो संडे को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं नेक्स्ट गाने के साथ। नॉट टू फॉरगेट आपकी डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294। टाइमलेस तड़का। RM2। टाइमलेस तड़का।

0: Seamless तड़का
1: RM2
2: वेल संडेज की सुबह में एक अजब सी आजादी तो होती ही है। वीकडेज में हम अलार्म के हिसाब से उठते हैं, संडे को मूड के हिसाब से, और आज का मूड भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोगों के लिए संडे मतलब फैमिली टाइम, किसी के लिए आउट टाइम, किसी के लिए घर की सफाई, किसी के लिए मूवी टाइम, और किसी के लिए बस बेड, ब्लैंकेट और मोबाइल। लेकिन चाहे संडे का प्लान है कुछ भी हो, म्यूजिक तो मज़ा डबल हो ही जाता है। और अगर हम ऐसे म्यूजिक चलाएंगे, आपके नाम जो भी आपको पसंद है वही चलाते हैं, और इससे से तो हम आपका ये संडे और भी दिलचस्प बना देते हैं। तो टाइमलेस तड़का में आज हम यही फॉर्मूला लेकर आए हैं। आपको कभी रोमांस मिलेगा, कभी मस्ती, कभी वो गाना जो सुनते ही पैर हिलने लगेंगे, और कभी वो मेलोडी जो बस चुप करा दे और दिल से सुने पर मजबूर कर दे। तो म्यूज़िक की खूबसूरती यही है, आपको ऑलरेडी पता है। तो कुछ ऐसे गाने हम जरूर चलाते रहेंगे आपके नाम। लेट मी टेल यू दैट थोड़ी देर में आप ऑल्सो सुन पाएंगे स्पोर्ट्स खबरें।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: अपनी घर मिलाते चलिए एग्जैक्टली 7:30 बज रहे हैं और स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी. तो चलिए उनसे सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है. गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको विकास जी.
4: नमस्कार रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. संडेज आर नॉर्मली फन डेज, इसके बाद कल से बैक टू स्कूल डेज. और इस बीच रविवार 16 अगस्त के हमारे इस प्रातकालीन स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सबका स्वागत है. सारा ध्यान वापस बैक टू इंग्लिश फुटबॉल पर, जिसके लीग चैंपियनशिप इसी शुक्रवार यानी परसों आरंभ हुई लीग चैंपियनशिप. और फ्रेंडली मैचों का सिलसिला भी जारी है. आज और कल लास्ट मैच खेले जाएंगे, बल्कि आज संडे को आखिरी मैच खेले जाएंगे. फिर एक सप्ताह की छुट्टी, तैयारी के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू जो होने जा रही है. और आज शाम 6 बजे महामुकाबला आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच पारंपरिक द ट्रेडिशनल एफए कम्युनिटी शील्ड में, यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 का कर्टेन रेज, पर्दा उठ रहा है. पर कौन गिरेगा और कौन उठेगा, देखते रहिए और सुनते रहिए. आज शाम आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, प्रीमियर लीग चैंपियन वर्सेस एफए कप विनर. सो फ्रेंडली मैचों में द रेड डेविल्स के सर पर भूत सवार हैं, किंतु पुराना कोच रूबेन अमोरिम भूत बनकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भूतों को परेशान कर रहा है. कल रात रूबेन अमोरिम के एसी मिलान ने माइकल कैरिक के मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-2 से परास्त किया. और इस मैच के दूसरे मिनट पर ही हैरी मैकग्वायर का एक पावरफुल हेड यूनाइटेड 1-0 से आगे. फिर चुकवोजे ने इक्वलाइज किया. पैट्रिक डोगू ने फिर यूनाइटेड को आगे किया, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 गोल एलयूसी से गोंजालो रामोस और अंत में रूबेन लॉफ्टस चीक ने अंतिम कील ठोंकी. इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-AC Milan 4. इसी मैच में कल मार्कस राशफोर्ड को खेलने का मौका दिया गया. ही इज बैक टू बैक यूनाइटेड, लेकिन द रेड डेविल्स का प्री सीजन कंपेन एंडेड इन ए डिसअपॉइंटिंग फैशन. बाकी मैचों में कल चेल्सी ने रियल सोसिएदाद को 3-1 से परास्त किया. मोगन रोजर्स ने अपना पहला गोल स्कोर किया द ब्लूज के लिए. हुआओ पेड्रो का एक डबल. और बता दें कि इस मैच के दौरान एंजो फर्नांडेज वाज बूड ऑफ बाय चेल्सी फैंस. फर्नांडेज अभी शुक्रवार को ही मैन

मैनचेस्टर सिटी में जाने वाला था लेकिन डेडलाइन पूरा हो गया और सिटी ने कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा, खासतौर पे 120 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव। सो एंजो फर्नांडेस को रहना पड़ेगा। चेल्सी 3 रियल सोसिएदाद 1, बायर्न म्यूनिख ने भी लाइप्ज़िग को 3-1 से हराया। लुइस डियाज के बाद ब्राउन एंड मुसियाला ऑन टारगेट फॉर बायर्न म्यूनिख। टोटेनहम हॉटस्पर ने होफेनहाइम को 3-0 से हराया। रिचार्लिसन के बाद मू का एक डबल फॉर द स्पर्स। डॉर्टमुंड 2 एएस रोमा 2। इंटर मिलान ने रियल बेटिस को 1-0 से परास्त किया। जॉन स्टोन्स का डेब्यू गोल फॉर इंटर मिलान। और इस प्रकार स्टोन्स की शुरुआत अच्छी रही। फिर बाकी मैचों में कल बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख ने एस्टन विला को 2-1 से हराया। माइंस 2 बोर्नमुथ 1, ब्रेंटफोर्ड 7 फ्रैंकफर्ट 0, ब्राइटन 1 बोलोनिया 0, एवर्टन 1 लिल 1 और हल सिटी 0 निस 0। तो लीड्स यूनाइटेड ने ऑक्सबर्ग को 4-0 से परास्त किया और न्यूकासल यूनाइटेड 1-0-4-2। संडरलैंड ने रेन को 2-1 से हराया। फुलहम 1 स्टुटगार्ट 0। बता दें कि आज संडे को भी कुछ फ्रेंडली मैच रखे गए हैं, खास तौर पे लिवरपूल वर्सेस कोमो दो दो मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले दिन के 2:30 बजे 2:30 PM लिवरपूल का एक पहला स्क्वाड मैदान पे उतरेगा। फिर रात 9 बजे अगेन लिवरपूल वर्सेस कोमो, यानी सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा। शाम 3 बजे टोटेनहम हॉटस्पर वर्सेस होफेनहाइम, 3:30 बजे एफसी बैजल का मुकाबला एफसी बार्सिलोना से, और रात 7 बजे शाल्के 04 वर्सेस रियल मैड्रिड। इंग्लैंड की लीग चैंपियनशिप शुक्रवार से आरंभ हुई एक ड्रॉ के साथ। कल बोल्टन ने प्रेस्टन को 2-1 से हराया। ब्रिस्टल सिटी 0 मिलवॉल 2, चार्टन एथलेटिक 2 डर्बी काउंटी 1। मिडलसब्रो ने भी लिंकन सिटी को 2-1 से हराया। नॉर्विच सिटी 1 वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन 2। पोर्टसमुथ 1 क्वींस पार्क रेंजर्स 3। स्टोक 1 स्वानजी 2 और शेफील्ड यूनाइटेड 0। बर्मिंगहम सिटी 0। द हैमर्स वेस्टहम यूनाइटेड आज अपना पहला मैच खेलेंगे बर्नले के मैदान पे, और द हैमर्स जल्द से जल्द प्रीमियर लीग में वापस लौटना चाहते हैं, आना चाहते हैं। इसलिए कल ही उन्होंने स्कॉटिश चैंपियन सेल्टिक के 22 वर्षीय मिडफील्डर अने एंजल्स को 22 मिलियन पाउंड में साइन किया है। अने एंजल्स को 22 मिलियन पाउंड में साइन किया, जो लीग चैंपियनशिप के लिए एक नया ट्रांसफर रिकॉर्ड है। पर इन सब पर बात करने से पहले बता दें कि कल स्पेन का लालीगा भी आरंभ हुआ, जिसमें 2 मैच खेले गए, और अभी जो बाकी जो मैच हैं वो आज और अगले सप्ताह से आरंभ होने जा रहा है स्पेन का लालीगा पूर्ण रूप से। और एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड आदि वे अगले सप्ताह से ही मैदान पे उतरने वाले हैं। ट्रांसफर बाजार एकदम खुल गया है, बता दें कि ट्रांसफर बाजार में, लेकिन उससे पहले स्पेन के लालीगा में अलावेस ने गेटाफे को 3-0 से हराया और सेविल्या 2 रेयो वालेकानो 1। संडरलैंड आल्सो नॉट एट रेस्ट, क्लब ने प्रीमियर लीग में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए टूलूज के लेफ्ट बैक डायन मिथाली को 25.5 मिलियन पाउंड में साइन किया है। पहले से अनुभवी राइट बैक टोमा म्यूनिये आ गया है स्टेडियम ऑफ लाइट में। टोटेनहम हॉटस्पर का फुल बैक जेड स्पेंस, यानी वर्ल्ड कप हीरो कह सकते हैं, अंततः अपनी किस्मत आजमाने इंटर मिलान में चला गया। केवल लगभग 30 मिलियन यूरो में सांसिरो में वो जॉन स्टोन से मिलकर डिफेंस संभालेगा। जहां तक ब्रैडली बाकुला का सवाल है तो कह सकते हैं कि द चेस इज ऑन। पेरिस सेंट जर्मेन के कोच लुइस एनरिके ने खुद कहा कि यदि कोई खिलाड़ी किसी क्लब में खुश नहीं है और एक मुस्कान भी नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लिवरपूल और ब्रैडली बाकुला के बीच इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर पर्सनल टर्म्स पर स्वीकृति हो गई है, किंतु पेरिस सेंट जर्मेन 145 मिलियन पाउंड मांग रहा है। पेरिस के शेख कुछ ज्यादा ही लालची हो गए हैं। जेफ बेजोस और अमित भाटिया का पैसा परेशान करने लगा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे बांग्लादेश क्रिकेट टीम धूम मचा रही है। प्रथम टेस्ट के चौथे दिन वो एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। सो बांग्लादेश की टीम ने कल अपनी पहली पारी में 426

0: 24 26 रनों पर ही ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 198 और दूसरी पारी में इस समय 245 पर अभी वे खेल रहे हैं, 7 विकेट गिर गए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया लीडिंग बांग्लादेश बाय 17 रन्स विद 3 विकेट्स रिमेनिंग, बल्कि अब आप 39 रन से लीड कर रहे हैं, एक और विकेट गिर चुका है, केवल 2 विकेट बचे हैं और बांग्लादेश की एक पूरी पारी अभी तक बची हुई है। एक ऐतिहासिक जीत बांग्लादेश हासिल करने वाली है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, पहले टेस्ट मैच का प्रथम दिन काफ़ी अच्छा रहा टीम इंडिया के लिए, 2 विकेट के नुकसान पर 288 पर अभी पहला दिन समाप्त हुआ। देव पदिक्कल ने 131 नाबाद रन बनाए। टेनिस में सिनसिनाटी ओपन के प्रथम मैच में ही लेजेंडरी खिलाड़ी नोवाक जोकोविच लुढ़क गया, उसे हराया अर्जेंटीना के चियागो तिरांटी ने 2-6, 6-4 और 6-4 से। आज इसी सिनसिनाटी ओपन में डैनिल मेदवेदेव के अलावा सित्सिपास, सबालेंका, जोडार और रायबाकिना आदि टॉप सीड खिलाड़ी कोर्ट पे उतर रहे हैं। मॉरिशस में आईसीसी सीजन 4 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में कल शाम थॉमस कुक टाइगर्स ने एपीपी लेपर्ड्स को 6 विकेट से परास्त किया। मैट हॉकिंस बना मैन ऑफ द मैच। इसी तीसरे हफ्ते के अंतर्गत आज भी 2 अन्य मैच रखे गए हैं, सुबह 9 बजे एएमजी पैंथर्स वर्सेस वन हेल्थ जागवर्स और दिन के 1 बजे मापू स्थित एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड में ही डिफेंडिंग चैंपियन कैंपस अब्रॉड लायंस का सामना करेंगे कॉन्टिनेंटल चीटाज। और क्षेत्रीय फुटबॉल में रोशनवा दुदला बीमा चैलेंज कप सुवेनियर कप टूर्नामेंट में आज शाम 3:30 बजे पॉइंट दिलास का बार्सिलोन एफसी और वेल लायंस के बीच जबरदस्त मुकाबला है। सो भूलेगा नहीं, आज शाम 6 बजे प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 का पर्दा उठ रहा है द एफए कम्युनिटी शील्ड के साथ प्रिंसिपालिटी स्टेडियम में आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco fin lanceau extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds par 100 roupies. Des pieds par 4 pieds à portier, 295 roupies. Granit, 8 pieds par des pieds, 2000 roupies. Lavoie à portier, 3500 roupies. SPC flooring, lordoise, luminaire, sanitaire, robinetterie et plaisir les autres produits à bas prix incroyable mais vrai. Promotion là, 10 pour des semaines seulement. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook Quality Déco.

0: Chris Thurka.
1: RM2.
2: वेल 8 बजने में अब कुछ ही समय शेष है और टाइमलेस तड़का का सिंपल रूल है मूड बदलना अलाउड है. अभी रोमांटिक मूड था, ठीक है, अब थोड़ी मस्ती कर लेते हैं. अभी सॉफ्ट गाना सुना तो अब थोड़ा झूम भी सकते हैं. म्यूजिक को एक ही मूड में बांध कर रखना जरूरी थोड़ी है, जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना. कभी हम बिल्कुल शांत होते हैं, कभी बिना किसी वजह के खुश है, कभी पुरानी बातों में खो जाते हैं और कभी बस म्यूजिक लगा कर कह देते हैं कि आज जो होगा देखा जाएगा. संडे इज द परफेक्ट डे फॉर दैट. आज किसी गाने को स्किप करने से पहले एक बार पूरा सुन लेना, हो सकता है जो गाना आपको पहले पसंद नहीं था आज वही फेवरेट बन जाए. You never know. और अगर घर में कोई आपके साथ गाना गा रहा है तो उसे जज मत कीजिए. सिर्फ थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन सन्ने की खुशी बिल्कुल सही होनी चाहिए. तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा ही दीजिए. किचन में है तो किचन से ही गाइए, गाड़ी में है तो स्टीयरिंग के साथ रिदम मिलाइए और घर में है तो आप घर से ही साथ निभाइए और उसे गा भी सकते हैं. बिकॉज दिस इज टाइमलेस तड़का और यहाँ हर शौक का स्वाद मिलेगा आपको. एंड यस, टॉकिंग अबाउट योर मैसेजेस, यहाँ पर एक दो मैसेजेस हम फटाफट से देख लेते हैं. हमारे साथ जुड़े हुए हैं यले शाम, आप हंसों के नाम से. कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड हम ठीक हैं एंड आई होप दैट यू आर गुड टू. और सभी को विश करते हैं वेरी हैप्पी संडे. एंड आपके नाम, आपके पूरे परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक हम जरूर डेडिकेट करेंगे. गुड मॉर्निंग, हमारे साथ जुड़ी हुई है ओजस्वी, लवेश, आशी, पापा बोबी, ममा रति, पापा किशन, भाई है साथ हमें, रेशमा, विराज, ममा दीपा. एंड यहाँ पर पूरे परिवार के नाम हम गाना जरूर डेडिकेट करेंगे. वेल श्वेता हुकुम बिना कैसे है हमारे साथ जुड़ी हुई है. हेलो श्वेता. एंड डेडिकेटिंग अ रोमांटिक गाना फॉर हबी रोशन. तो चलिए, आपकी रानी की ओर से मैसेज आया है दैट शी लव्स यू सो सो सो मच. तो प्यार ही प्यार, यहाँ पर हम ज़रूर एक रोमांटिक गाना चलाएंगे आपके नाम भी बाद में. बट फिर नाउ आप एंजॉय कीजिए ये तड़केदार गाना इन योर टाइमलेस तड़का. दैट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी सोल्जर.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: listening to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning, Sabiko. Ghar milate chaliye, subah ke theek 8 baj rahe hain. Ghar mein lal ja phajid ke 8 baje ta. आठ बजे के भोजपुरी समाचार में सब कोई के स्वागत करल जाता, सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। सबसे आगे हमनी देश के बारे में बतियावब जा। जैसे आप लोग जानत हव कि काल भारत के 80 स्वतंत्रता दिवस मनावल गल और इ अवसर पर भारतीय तिरंगा के गर्व से फहरावल गल और इ समारोह इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र फिनिक्स में लगल। इ अवसर पर भारतीय मूल के सब आदमी लोग हुआ मौजूद रलन जा। भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में विशेष संबंध के रेखांकित करण गल। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त हाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस यात्रा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री गुलाम के भारत यात्रा के भी उल्लेख करलन। उच्च स्तरीय यात्रा के बखत कई गो ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर करगल और यही अवसर पर एक विशेष समारोह भी लगल जहाँ पर मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित दूसर राजनीतिक और राष्ट्रसभा के सदस्य भी भाग लेलन जा। ई एगो रंगारंग कार्यक्रम रहल। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज दिमास के दक्षिण अफ्रीका खातिर रवाना होयन। ऊ हुआ जयहन ऊ सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कमेटी यानी कि सादेक के 46वां शिखर सम्मेलन में भाग लिहन। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा काल लेंदी 17 अगस्त के करियन। सम्मेलन में क्षेत्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचा के विकास और कृषि क्षेत्र में बदलाव के संगे संगे कई गो अहम मुद्दा पर भी बतियावल जाए। ये बरिस शिखर सम्मेलन के विषय है अधिक न्यायपूर्ण विश्व के दिशा में बुनियादी ढांचा के विकास, कृषि के रूपांतरण और महत्वपूर्ण खनिज के माध्यम से लचीला, टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकरण के बढ़ावा दे के। शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम यानी कि कर माध्यम से ऊ दूसर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष से भेंट करियन। ई बैठक में साझा हित के मुद्दा आ क्षेत्र के रणनीतिक प्राथमिकता, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर बतियावल जाए। मॉरिशस में मच्छी पकड़े होला जो जहाज बाती ओकर बारे में बतियाई लाजा। मॉरिशस में मच्छी पकड़े के जहाज के निगरानी व्यवस्था के आर मजबूत करे के फैसला लेवल गल बाटी। मत्स्य मंत्री अरविंद बुलेल बुलन कि क्षेत्र में अवैध या बिना सूचना और अनियमित रूप से

करल जाए होला मच्छी पकड़े के गतिविधि हर बरिस $5 बिलियन से जस्ती आर्थिक नुकसान करेला। मौसस खातिर ई एगो महत्वपूर्ण चुनौती है। देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से जस्ती में फैलल बाटे और अवैध मछली पकड़े से निपटे खातिर क्षेत्रीय सहयोग के बहुत अहम मानल जाता। यही मद्देनजर मंत्रिमंडल सुख के 14 अगस्त के फिशरीज वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 के लागू करे के मंजूरी दे लें जा। एकर उद्देश्य जहाज के निगरानी प्रणाली के जस्ती प्रभावी बनाए के है और अवैध मछली पकड़े के गतिविधि पर अंकुश लगाए के है। ये भी उल्लेखनीय बात बाटे कि मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम 2005 से मौजूद बाटे। ई नवा सुधार ई प्रकार फिशरीज एक्ट 2023 के तहत 2024 में मजबूत करेगा नियामक ढांचा के पूरक है, जेकर में विशेष रूप से VMS स्वचालित पहचान प्रणाली यानी कि जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली बा ई सब ई में शामिल बाटे। मॉरिशस में अब बात करी ला जा हमनी खेतीहर के बारे में। खेतीहर लोग के बारे में मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फारे जो बाटे एक विलय यानी कि फीसों से किसान लोग के प्रतिनिधि विरोध दिखाई ले हवन जा। किसान के प्रतिनिधि ई विलय से चिंता जताइले हवन जा। दोनों संस्था कृषि क्षेत्र में काम करेलन जा पर उलो की जिम्मेदारी अलग अलग है। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसान की सामाजिक और वित्तीय सहायता देवेला, जबकि फारे मुख्य रूप से अनुसंधान प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग पर ध्यान देवेला। किसान के प्रतिनिधि लोग के अनुसार इफिजों से कृषि परिवार के मिले होला सामाजिक सहायता कमजोर हो जाए और अनुसंधान गतिविधि भी प्रभावित हो। उ लोग सुझाव दिले हों जा कि दोनों संस्था के बरकरार रखे के चाहें यानी कि अलग अलग, काहे कि उ लोग के जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से अलग है और उ लोग दोनों काम दोहरा नहीं नहीं दोहरे अंजा और किसान के प्रतिनिधि सरकार से कोनो फैसला ले से आगे किसान से परामर्श करे के भी मांग कर ली हवन जा। दूसरे देश के समाचार में बढ़ी ला जा हमनी इंडोनेशिया देने, जहां पर 7.7 तीव्रता के एगो शक्तिशाली भूकंप से कम के अला से कमती से कमती 47 जना के मौत हो गल बाटे। फ्लोरेस टापू में आली भूकंप के बाद कई गो झटका फिर महसूस कर गल और सैकड़ों इमारत के नुकसान पहुंचल बाटे। दूसरा दिने दक्षिण लेबानन में इसराइल के हमला में कम से कम 11 जना के मौत हो गल बाटे। लेबानन के अधिकारी बोले हवन जा कि मरे होला आदमी में महिला और लड़का लोग शामिल हवन जा, जबकि इसराइल हमला में हिजबुल्ला के एगो कमांडर के निशाना बनाए के बात बोले हवन। ते ही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से साथ देला ओका खातिर धन्यवाद। अभी संगे रह बढ़ब जा हमनी मरनी के समाचार देने।

0: It's the weather broadcast with winners.
1: On est tous winners.
2: आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है। आज पूर्व की ओर से आने वाली बादल आज शाम से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर दोपहर में। पूर्व में कुछ बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। शाम के समय और रात के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्वी तथा दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर विशेषकर कोहरा छाएगा और हवा सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हल्की बहेगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दिन के दौरान बहेगी और खुली जगहों में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है तथा लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। दक्षिण और उत्तर के लगूनों में शाम के समय सुधार आएगा और तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ऊंचाइयों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर।
3: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners.
7: Timeless Tadka.
8: RM2.
7: Timeless Tadka.

0: Express तड़का
1: RM2
2: Once again, a very good morning आप सभी को 8:17 हो रहे हैं और संडे की सुबह अब धीरे धीरे अपनी पूरी रौनक में आ गई है। आप सुन रहे हैं टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया। वेल, पहले घंटे में म्यूजिक के अलग अलग रंग मिले और अब दूसरा घंटा भी वही सिलसिला लेकर आ रहा है, यानी कि गुड म्यूजिक, अच्छा मूड और संडे की बिल्कुल बेफिक्र से फीलिंग। अब वो समय है जब कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग घर से बाहर निकलने की तैयारी में होंगे, कुछ अपने फैमिली के साथ बैठे होंगे और कुछ लोग बस यही कह रहे होंगे कि आज कहीं नहीं जाना, बस घर पर ही रहना है। जो भी आपका संडे प्लान है उसमें म्यूजिक को जरूर आप शामिल कीजिए, क्योंकि संडे की सुबह बिना म्यूजिक के थोड़ी

0: थोड़ी सी लगती है ना। और आज का जो प्लेलिस्ट है जो हम ढूंढ कर लाए हैं, एक चुन कर लाए हैं आपके नाम, ये तो आपको बहुत ही पसंद आएगा ही। कभी दिल को छू लेने वाली गाने, कभी थोड़ा रोमांस, कभी मस्ती, कभी वो ट्रैक जिसके साथ आप बिना सोचे गाना शुरू कर दें। बस एक चीज पक्की है कि म्यूजिक अच्छा होना चाहिए और ये हम जरूर गारंटी करते हैं यहाँ पर। तो चाय हो, कॉफी हो, नाश्ता आप ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द गाने और रेडियो मस्ती पर आप एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल मोमेंट।
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का।

0: Timeless तड़का
1: RM2।
2: ऐसे गाने अगर चलाते रहेंगे तो दिल आशिकाना हो ही जाएगा। Well, I hope you're enjoying your Sunday। वैसे इस Sunday, especially this Sunday, की एक और खास बात है कि कल से बच्चों के स्कूल दोबारा शुरू हो रहे हैं। Holidays officially almost over बच्चों, आज तक सुबह उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं था, लेट ब्रेकफास्ट, लेट बेड टाइम, पूरा दिन मस्ती। लेकिन कल फिर से अलार्म बजेगा, यूनिफॉर्म निकालनी है, स्कूल शूज देखनी है, बैग रेडी भी करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्कूल के लिए उठना है। और मुझे लगता है कि घर में अभी तो दो तरह के लोग होंगे। बच्चे कहेंगे, मम्मी आज तो हॉलीडे ख़त्म ही नहीं हुई है, तो स्टिल संडे और कल से स्कूल डे। और पेरेंट्स कहेंगे कि फाइनली कल से रूटीन वापस। लेकिन ऑनेस्टली हॉलीडेज के बाद स्कूल का पहला दिन भी अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है। नया सेमेस्टर, नए लेसन्स, दोस्तों से मिलना, टीचर्स को देखना और हॉलीडे की सारी स्टोरीज शेयर करना। तो बच्चों आज का दिन आप एंजॉय कीजिए, लेकिन रात को बैग ज़रूर चेक कर लेना। बुक्स हैं, यूनिफॉर्म रेडी है, शूज मिल गए, अलार्म लगाया, सब कुछ आप ठीक से चेक कर लेना। बस रेडी करके आप अच्छे से आराम से सो जाना। और पेरेंट्स कल सुबह के लिए थोड़ा पेशेंस पहले से ही रख लीजिए। आज संडे है तो लास्ट हॉलीडे संडे को यादगार बना देते हैं। और रेडियो मस्ती पर म्यूजिक तो चलता ही रहेगा। वेल, इट्स योर टाइमलेस तड़का, जहां पर हम बहुत ही खूबसूरत गाने चलाते रहते हैं संडे मॉर्निंग विद गुड म्यूजिक एंड गुड वाइब्स। तो चलिए द नेक्स्ट ट्रैक, दैट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी अजनबी, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा।
3: रेडियो मस्ती।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: हर दिन नई शुरुआत का एक मौका होता है। कभी हम सोचते हैं कि कल कुछ अच्छा करेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा खुश रहेंगे, कल अपने लिए समय निकालेंगे, कल किसी अपने से बात करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि कल का इंतज़ार करते करते आज निकल जाता है। इसलिए आज संडे है, थोड़ा रुक जाइए, खुद से पूछिए मैं आज क्या कर सकता हूँ जो मेरे दिल को खुश कर दे। हो सकता है जवाब बहुत ही छोटा हो, एक कप चाय, किसी अपने के साथ थोड़ी देर बैठना, अपना फेवरेट गाना सुनना, बच्चों के साथ समय बिताना, या फिर बस कुछ देर बिना किसी काम के आराम करना। तो आज के दिन को थोड़ा आप महसूस कीजिए। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में एक खूबसूरत पल जरूर होता है। बस उस पल को पहचानने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। तो आज की छोटी सी याद जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। कभी कभी एक छोटी सी खुशी को दिल से महसूस कर लेना भी काफी होता है। तो आज संडे है, जल्दी किस बात की, थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइए, और जो अच्छा है उसके लिए शुक्रिया कहना मत भूलिए।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: You're listening to RM2, a radio must see.

ब्रिंदा बंगाओ हमारे साथ जुड़ी हुई है रोजबेल से और आज आपकी मामी शर्मिला बारू का जन्मदिन है सो उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 9 बज रहे हैं। देश विदेश की खबरें लेकर स्टूडियो में आ गई है आशिता, तो चलिए उनसे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको आशिता।
4: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फाग के प्रस्तावित विल यानी फ्यूजन से सीधे प्रभावित हो सकती है। किसानों के प्रतिनिधियों ने इस विलय का विरोध करते हुए वे ये चिंता जताई है। दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि फागे मुख्य रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसानों के प्रतिनिधियों के अनुसार फ्यूजन से कृषि परिवारों को मिलने वाली सामाजिक सहायता कमजोर हो सकती है और अनुसंधान गतिविधियाँ भी प्रभावित हो सकती हैं। उनका सुझाव है कि दोनों संस्थाओं को बरकरार रखा जाए, उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग की जाएं और कार्यों में दोहराव से बचा जाए। किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से किसी भी फैसले से पहले किसानों से परामर्श करने की मांग भी की है। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। मत्स्य मंत्री अरविंद बुलेलिया के अनुसार क्षेत्र में अवैध, बिना सूचना के और अनियमित रूप से की जाने वाली मछली पकड़ने की गतिविधियों से हर साल $5 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है और अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने कल शुक्रवार को फिशरीज विसेल मॉनिटोरिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य जहाजों की निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मेलरोज जेल में 43 वर्षीय कैदी अविनाश रामगोती की मौत फांसी लगने से दम घुटने के कारण हुई थी। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर्स सुदेश कुमार गंगाधीन और प्रेस और प्रेम चमन द्वारा कल किए गए पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि हुई। अविनाश रामगोती को कल सुबह मेलरोज स्थित उसकी कोठरी में मृत पाया गया था। वह वर्ष 2006 में लालमाटी में दो भाभियों इंदिरा और आशा जरी की दोहरी हत्या के मामले में 37 साल की जेल की सजा काट रहा था। मुकदमे के दौरान उसने इस अपराध में अपने चाचा राजेश रामलोगन को भी शामिल बताया था। राजेश रामलोगन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस की कथित बर्बरता का आरोप लगा था। इस मामले में MCIT के 3 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार घटना में कई संदिग्ध शामिल थे और घायलों में से एक की हालत गंभीर है। पुलिस को कल शनिवार तड़के स्थानीय समय अनुसार करीब 1:28 पर छात्रों के रेजिडेंस हॉल के बाहर हुई इस घटना की सूचना मिली। गोली लगने से घायल सभी 5 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 की चोटें जानलेवा नहीं बताई गई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि किसी संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। विश्वविद्यालय में लगाया गया स्थायी लॉकडाउन हटा लिया गया है, लेकिन परिसर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बड़ी मौजूदगी अब भी बनी हुई है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हम एक शुभ समाचार की ओर। कॉम्बुम्बई लेन नंबर 3 वाकवा में

हमें 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शकुंतला गोपाल, श्रीमती शकुंतला गोपाल पैदाश नाम तुकाराम और जिन्हें अक्का मानू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:15 पर उनके घर कौबुम्बई वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोमामेल की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 2:15 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: राइट वंस अगेन गुड मॉर्निंग आप सभी को 9:10 हो रहे हैं और देखिए सुबह का ये खूबसूरत हिस्सा भी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए कि संध्या अभी बाकी है। द होल डे इज हियर और पूरा दिन हमारे सामने है, तो आज किसी चीज़ की जल्दी मत कीजिए। अगर बाहर मौसम अच्छा है तो थोड़ा बाहर निकलिए, एंड मौसम तो अच्छा ही है क्योंकि हम अभी अभी झांक रहे थे और देखा कि क्या मस्त मौसम है। तो अगर आप घर पर रहना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, फेवरेट मूवी लगा सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, दोस्तों को मिल सकते हैं, या फिर हेडफोन्स लगाकर अपनी दुनिया में खो जाए। वेल, संडे का अपना ही जादू होता है, ना कोई प्लान, सब बस ऐसे ही फटाफट प्लान बन जाता है और दिन बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। कभी एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट, एक कप चाय, एक अच्छा गाना और अपने लोग, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो चलिए अभी हम टाइमलेस तड़का में और गहराई से जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत गाने। एक एक गाना हम लेकर आते हैं आप लिसनर्स के नाम, क्योंकि हमें पता है कि संडेज और फंडेज जहाँ पर आप म्यूज़िक में खोना चाहते हैं, इसलिए ये गाने सिर्फ आपके नाम हम चलाते रहेंगे। एंड लेट मी टेल यू दैट इट्स द लास्ट डे ऑफ हॉलीडे। जी हाँ, कल से स्कूल शुरू हो रहा है, तो बच्चे लोग कोई टेंशन नहीं, आज खुल के जियो एंड हैव ग्रेट फन। बट स्टिल हमने बताया था आपको कि बैग आप तैयार रख देना, क्योंकि कल सवेरे बहुत ही चहल पहल होने वाली है। बट यू कैन लव, क्योंकि स्कूल में आप मिलेंगे अपने दोस्तों से, टीचर्स से, एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम। वैसे गुड टाइम यहाँ पर भी हम क्रिएट करेंगे नए गानों के जरिए। सो एंजॉय द टाइम इन योर टाइमलेस तड़का यहाँ पर रिया के साथ। वी गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक डेडिकेटेड टू आवर लिसनर्स। नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस 5499-1294।
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का।

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: संडे की सुबह और प्लान्स, दोनों का एक अलग ही कनेक्शन होता है। किसी ने आज के लिए बहुत सारे प्लान्स बना लिए होंगे, कोई स्कूल की शॉपिंग के लिए निकलेगा, बैग्स, कॉपीज, पेंस, शूज, क्योंकि कल से बच्चों का स्कूल फिर से शुरू हो रहा है। किसी घर में यूनिफॉर्म आयन हो रही होगी, कोई लंच बॉक्स की बातें कर रहा होगा और बच्चे शायद अभी भी सोच रहे होंगे हॉलीडेज थोड़ी और लंबी हो जाती तो कितना अच्छा होता। और कुछ लोगों का संडे प्लान बिल्कुल सिंपल होगा, बीच पर जाना फैमिली के साथ, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, थोड़ा मार्केट घूमना या फिर घर पर रहकर बस आराम करना। और सच कहूँ, संडे का सबसे अच्छा प्लान वही होता है जो दिल को खुशी दे, चाहे पूरा दिन बाहर बिताए या पूरा दिन घर पर। म्यूजिक साथ हो तो हर प्लान और भी खूबसूरत लगता है, और टैनिस तड़का में यही तो हो रहा है, हर मूड के लिए गुड म्यूजिक। तो बताएं आज का आपका संडे प्लान क्या है। तब तक एक और बहुत ही खूबसूरत गाना आप सभी के नाम।
0: टाइमलेस तड़का,
1: RM2,
0: टाइमलेस तड़का।

0: Business Tadka.
1: RM2.
2: राइट, चलिए टाइमलेस तड़का में हम बॉलीवुड की ओर नजर घुमाते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसके साथ नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी आवारापन 2. इमरान हाशमी का वो इमोशनल इंटेंस अंदाज और आवारापन का नाम सुनते ही 2000 के बॉलीवुड म्यूजिक लवर्स को कुछ खास गाने भी याद आ जाते हैं. ओरिजिनल आवारापन 2007 में आई थी और अब लगभग दो डिकेड्स बाद इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के रोल में वापस आए हैं. आवारापन 14 ऑफ अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और फिल्म के साथ फैंस का कनेक्शन सिर्फ कहानी तक लिमिटेड नहीं है. आप ये जानते हैं, इट्स द म्यूजिक, इमोशंस एंड दैट इमरान हाशमी एरा. वो जमाना याद है जब बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके गाने हर जगह बजने लगते थे, रेडियो पर, म्यूजिक चैनल्स पर, शादियों में और हर किसी की प्लेलिस्ट में. और आज के यंगस्टर

0: शायद उस समय को अलग नज़र से देखी, लेकिन जो लोग उस दौर से गुजरे हैं उनके लिए आवारापन एक फीलिंग है. और वैसे भी संडे मॉर्निंग प्लस बॉलीवुड म्यूजिक प्लस नॉस्टैल्जिया, परफेक्ट कॉम्बिनेशन.
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: कभी-कभी हम सोचते हैं कि खुशी के लिए बड़े प्लान्स जरूरी होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक कप चाय, अपने लोग, थोड़ी हंसी और एक अच्छा गाना, बस इतना ही काफी होता है। संडे हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, कतई नहीं है, कभी रुकना भी जरूरी है। आज अगर आपके पास कोई बड़ा प्लान नहीं है तो भी बिल्कुल ठीक है, इट्स टोटली फाइन। आज का दिन बस अपने तरीके से जिए, थोड़ा बीच

0: थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा फैमिली टाइम और बीच बीच में रेडियो मस्ती का साथ. मैं हूँ आपके साथ आपके रिया एंड यू ट्यून इन टू आरएमटू रेडियो मस्ती. यहाँ पर आपके मैसेजेस भी भर भर के हैं, तो चलिए एक दो मैसेजेस हम देख लेते हैं. एज यूजुअल वी हैव हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी ललिता जीतन जी. कैसी हैं आप? नेक्स्ट ट्रैक आप अपने कलीग्स के नाम डेडिकेट करना चाहती है. सिमी, सोनी, शिमला, रोमी, सलमा, दिशी, सारिका एंड द होल जीतन परिवार जो लव वाउचर्स साथ दे रहे हैं. एंड यहाँ पर हमारे साथ ऑल्सो डबिचन परिवार है प्यारे बयासी. सो स्टे राइट कनेक्टेड, ऐसे ही हमारे साथ. द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट टू ऑल आवर लवली लिसनर्स.
1: टाइमलेस तड़का
2: आरएम2
1: टाइमलेस तड़का.

0: Nobody has seen us.
1: Hey, give me the money or I'll kill him.
0: Hey, don't kill him. I'll give you the money, okay?
1: Show me the money or I'll kill him.
0: No, I'll give you the money. I'll give you the money, okay?
1: I'll kill him. Give me the money.
2: पागल हो गए हो क्या? वो लाश को मार डालेगा. इल्जाम उसके सर पे चला जाएगा. हम दोनों बच जाएंगे.
0: अरे क्या बात कर रही हो? दोस्त है मेरा वो.
2: क्या?
0: हाँ? अरे नहीं, तुम समझी नहीं.
2: क्या?
0: अगर उसने लाश की मुंडी काट दी ना, तो हम लोगों को मुंडी एक जगह पर ले जानी पड़ेगी और धड़ एक जगह पर ले जाना पड़ेगा. फंस जाएंगे हम लोग. क्या बात कर रहे
2: हो? अरे इसको क्या हो गया? अभी तो उसे मार रहा था, अभी खुद कैसे लड़क गया?
0: आत्मा, आत्मा ने झटका दे दिया और तुम भी तमीज से रहना. चलो इससे पहले कोई आ जाए, इस लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा हमको. जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी.
2: इसके पहले कोई और आ जाए, लाश को ठिकाने लगा देते. ओके.
0: इसकी उंगली तो मैं इसके तरफ से कर लेता हूँ यार, तुम टेंशन मत लो.
2: चलो
0: बचा बचा, जल्दी से. चुप चुप चुप, तुमको नहीं बोल रहा, तुमको नहीं बोल रहा हूँ.
3: Radio Masti.
4: Your life is not

0: 94.4 Center 99.4
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Time check din ke 10 baj rahe hain. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आशिता के साथ। नमस्कार आपको आशिता।
4: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। विथ सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी यानी सादेक के 46वें साधारण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कल सोमवार 17 अगस्त को करेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि क्षेत्र में बदलाव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय है अधिक न्यायपूर्ण विश्व की दिशा में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि के रूपांतरण और महत्वपूर्ण खनिजों के माध्यम से लचीले, टिकाव और समावेशी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। शिखर सम्मेलन से के माध्यम से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में साझा हित के मुद्दों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं, विशेष रूप से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा तथा व्यापार पर चर्चा होगी। और साथ में बात करते हैं हम, करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट से के प्रस्तावित विलय यानी फ्यूजन से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने इस विलय का विरोध करते हुए ये चिंता जताई है। दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जबकि फैगे मुख्य रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसानों के प्रतिनिधियों के अनुसार फ्यूजन से कृषि परिवारों को मिलने वाली सामाजिक सहायता कमजोर हो सकती है और अनुसंधान गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है। उनका सुझाव है कि दोनों संस्थाओं को बरकरार रखा जाए, उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग की जाएं और कार्यों में दोहराव से बचा जाए। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MFDC इस साल अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। MFDC स्थानीय प्रतिभाओं को समर्थन देने के साथ साथ विदेशी फिल्म निर्माण को मॉरिशस में आकर्षित करने के लिए भी काम करता है। इस वर्ष और अगले वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अपनी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर MFDC सिनेमा दोविलास कार्यक्रम भी आयोजित करेगा जिसका उद्देश्य मॉरिशनों को स्थानीय फिल्मों और फिल्म निर्माण से परिचित कराना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई में 1992 के बाद पहली बार किसी तूफान के सीधे टकराने की आशंका के बीच प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। श्रेणी एक का तूफान लाला हवाई के तट से कुछ दूरी पर सक्रिय है और इसकी रफ्तार 75 मील यानी करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे खराब स्थिति में बिग आइलैंड में करीब 63 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और समुद्र में लगभग 3 फीट ऊंची तूफानी लहर उठ सकती है। बिग आइलैंड के लिए हरिकेन चेतावनी जारी है जबकि माउई काउंटी, हुआऊ, कावाई और निहाओ के में ट्रॉपिकल तूफान की चेतावनी प्रभावी है। अधिकारियों ने लोगों से बाढ़ और भूस्खलन समेत संभावित जानने व परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा है। तूफान के कल शनिवार को बिग आइलैंड के दक्षिणी सिरे से टकराने या उसके बेहद करीब से गुजरने की संभावना यानी कि कल सोमवार को, जिसके बाद ये पश्चिम की ओर बढ़ेगा। और उधर साथ में हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में इस सप्ताह आए शक्तिशाली तूफानों के बाद इंडियाना में कम से कम 5 लोगों की मौत हो की पुष्टि की गई है। अधिकारियों के मुताबिक तूफानों ने क्षेत्र के कई राज्यों को प्रभावित किया है। इंडियाना के गवर्नर माइक ब्राउन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राज्य की ओर से की गई राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा की मांग को मंजूरी देंगे। इससे तूफान से प्रभावित लोगों और इलाकों के लिए

0: संघीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहे, सुनते हैं शोक समाचार। कैथोबो रोड मोनाको में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मुनिया दुखी पैदाशाम तूफानी और जिन्हें हसवंती के नाम से बुकज़ादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी कविता दुखी के घर मोनाको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आवंचा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: US तड़का
1: RM2
2: हेलो जी, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और देखिए, संडे की सुबह कितनी जल्दी निकल गई। आपके साथ टाइमलेस तड़का का आखिरी आवर शुरू हो रहा है और अभी भी मूड वही है, गुड म्यूजिक, गुड वाइब्स और एक ब्यूटीफुल संडे। वेल, सुबह से लेकर अब तक कितने रंग दिख लिए हमने, कभी पुरानी यादों में गए, कभी सॉफ्ट मेलोडी सुनी, कभी बॉलीवुड की बातें की और बीच बीच में संडे के प्लान सब भी बना लिए। किसी का प्लान बीच का है यानी समुद्र तट का, किसी का फैमिली लंच, किसी को स्कूल की शॉपिंग करनी है और किसी का प्लान है आज घर से बाहर ही नहीं निकलना। और ऑनेस्टली हर प्लान परफेक्ट है क्योंकि संडे किसी और की मर्जी से नहीं, अपने मूड के हिसाब से जीने का दिन है। कल से बच्चों का स्कूल भी दोबारा शुरू हो रहा है तो आज का दिन हॉलीडेज का आखिरी पूरा दिन भी है, तो बच्चों आज फुल मस्ती और पेरेंट्स आज एंजॉय कीजिए क्योंकि कल से फिर अलार्म, स्कूल बस, लंच बॉक्स और सुबह की भाग दौड़। लेकिन अभी कल की फिक्र नहीं, आज संडे है और जब तक संडे की ये समय हमारे साथ है, म्यूजिक का चलता रहेगा। मैं हूँ आपके साथ आपके रिया और चलिए टाइमलेस तड़का के आखिरी म्यूजिकल आवर को बनाते हैं थोड़ा और स्पेशल।
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: आज का फैशन टिप स्पॉन्सर्ड बाय हल्करी फैशन। संडे आउटिंग का प्लान है तो याद रखिए, डेनिम इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। एक सिंपल पेयर ऑफ जीन्स को आप एक क्रिस्प शर्ट, कलरफुल टॉप या कंफर्टेबल कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं। और लुक को थोड़ा और खास बनाना हो तो एक स्टाइलिश हैंडबैग, वॉच या पेयर ऑफ सनग्लासेस बहुत ही अच्छे रहेंगे। और एक छोटा सा सीक्रेट आउटफिट को आप ओवर एक्सेसराइज मत कीजिए, एक या दो एक्सेसरीज को हाईलाइट होने दीजिए ताकि पूरा लुक बैलेंस्ड और क्लासी लगे। फैशन का असली फंडा पता है क्या है? सिंपल रखिए, अपना रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कीजिए। संडे हो या कोई स्पेशल ओकेजन, आपका स्टाइल आपकी पहचान। आज का फैशन टिप स्पॉन्सर्ड बाय हल्करी फैशन।
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्करी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

0: Express तड़का
1: RM2
2: चलिए जी आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं एंड नॉर्मल मैसेजेस पहले देख लेते हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस, वी हैव अ बर्थडे मैसेज यहाँ पर विशिंग भांजी उदीश को अ वेरी हैप्पी बर्थडे. जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा प्यार, गुड हेल्थ, सक्सेस फ्रॉम आंटी किविना एंड पूरे परिवार. वैसे आपका मैसेज फुल नहीं आया है, हम कई बार कहते रहते हैं कि जब आप नॉर्मल मैसेजेस भेजते हैं तो कभी कभार पूरा मैसेज नहीं आता, स्पेशली जब मैसेज थोड़ा लंबा हो, अगर एक दो लाइन का हो तो मिल जाती है. सो यहाँ पर आपको हम विश करते हैं उदीश अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड यस वी हैव ऑल्सो हमारे साथ बहुत सारे लोग तो जुड़े हैं लेकिन बर्थडे मैसेजेस आज बहुत सारे हैं. बीबी रियांश पूरन का आज जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू रियांश. बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम पापा उमेश, मामा है नीलम, बहन है आपकी क्यारा, दादी अमृता, चाचा सूरज एंड द होल फैमिली एज वेल. एंड ऑल्सो हम व्हाट्सएप की ओर भी बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रकाशवती जी. कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आप हमें सुन रही हैं, दैट्स राइट, क्योंकि हम मॉर्निंग शोज स्पेशली करते हैं. बट इट्स गुड कि हमारी आपकी मुलाकात यहाँ पर हो गई है. एंड नेक्स्ट ट्रैक आप के नाम भी हम डेडिकेट करते हैं. वी ऑल्सो हैव यहाँ पर बेटी यशना बिंदाबन जिनका आज जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू यशना, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस. वेल रिविया दिजांगी से हैं आप और गुड विशेस कमिंग फ्रॉम मामा नंदा, पापा गणेश, मासी चंदा, बेब अफजाल, वरुण, वर्षा, यश, आश्ले, आयुष, आरव, आयशना, आशिफा, अकेल, बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग कमिंग फ्रॉम लेटर मोसा रविना एज वेल. एंड वी हैव यहाँ पर अपने नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं. एंड यू आर लविंग द प्ले लिस्ट टुडे, सो थैंक यू सो मच. वैसे आप एक गाना रिक्वेस्ट कर रही है तो चलिए हम देखते हैं, अगर हो सके तो हम ज़रूर चलाएंगे आपके नाम. एंड नेक्स्ट ट्रैक ऑल्सो जाता है फॉर अक्षिता काइटू. आप है कैप मालेगांव से और आज आपका जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत सारा प्यार, गुड विशेस कमिंग फ्रॉम मामा नताशा, पापा राज, बहन है लविशी एंड भैया युदीश, मौसी बिंदिया, अनीशा, मौसा सोना, राजीव एंड द होल फैमिली एज वेल. विजया है हमारे साथ वकवा से और आवारापन मूवी का एक गाना आप रिक्वेस्ट करें, वैसे आवारापन 2. ऑलराइट, देखते हैं अगर हो सके तो हम ज़रूर चलाएंगे क्योंकि एक गाना तो हमने ऑलरेडी चला दिया है, बट आपके लिए अगर टाइम मिले ज़रूर चलाएंगे क्योंकि गाने तो यहाँ पर भर भर के हैं, बट स्टिल वी कैन सी. सो लेट्स हियर द नेक्स्ट ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल वन डेडिकेटेड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स.

0: RM2 Radio Musti.
1: नाउ संडे मॉर्निंग का एक स्पेशल लाइव अपडेट। अगर आप आज घर पर बैठकर सोच रहे हैं कि संडे को क्या किया जाए, तो शायद हमारे पास आपके लिए एक आइडिया है, बिकॉज समथिंग बिग इज हैपनिंग एट SVICCPI, द उत्सव इंडिया वर्सेस द शॉपिंग कार्निवल, द इंटरनेशनल होम एंड गार्डन एक्सपो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज इसका लास्ट डे है। 12

0: अगस्त से चल रहा ये शॉपिंग एक्स्ट्रावेगेंसा आज अपने फाइनल डे में एंटर कर चुका है, जहां होम डेकोर, फर्नीचर, लाइटिंग, गार्डन प्रोडक्ट्स, किचन आइटम्स, टेक्सटाइल्स बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और हमारी अपनी ही पूनम वहां पर लाइव है SBICC Pai से, सो चलिए उनसे बात करते हैं। हाय पूनम।
1: हाय रिया, कैसे हैं आप?
0: आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू?
1: अरे परफेक्टली, यहाँ पर तो मैं आपको क्या बताऊँ रिया, क्या माहौल बन चुका है यहाँ पर। इनसाइड तो बस लाइट ही लाइट्स दिख रहे हैं और बाहर सिर्फ लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर जो नज़ारा है आप मान नहीं सकते कि यहाँ पर लोगों की लाइनें इतनी लंबी लग चुकी हैं सिर्फ SBICC Pai में, जहाँ पर इस समय हूँ मैं। और उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल का जो आखिरी दिन है, जैसे आपने बताया 12th से स्टार्ट हुआ था और 16th ऑफ अगस्त हो गया, पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC की तरफ से चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इवेंट्स वर्क्स अपनी पूरी मेहनत में लगा हुआ है और साथ में कह सकते हैं कि इस समय जो बस इंतज़ार हो रहा है कि कब गेट खुलें और सब लोग एंटर करें। ऑलरेडी बहुत सारे लोग एंटर कर चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल लाइंस भी हैं जो कि 11 बजे से पढ़ने जैन का लाइव परफॉर्मेंस होगा, तो इसके लिए इनका जुनून अलग देखने को मिल रहा है। और रिया मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर SBICC में इतना कुछ है जो बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे, और कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें लाए हैं वर्ल्ड से लाए हैं। जैसे अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पे क्विल्स हैं, कुछ तो लोकल भी हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ लंदन से हैं, और कह सकते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है, राखी का टाइम आ रहा है, तो बहुत प्यारी प्यारी सी राखियाँ हैं, पोस्टर्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, मतलब होम डेकोर से रिलेटेड सब कुछ है। जिन लोगों को अभी अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है या कुछ कई टाइम होता है कि बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती है उसको रीन्यू करनी होती है, तो यहाँ पर इनके पास सोफ़ा है, मैट्रेसेस हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए हैं, पर्सेस हैं। बात कहें ना तो यहाँ पर पानी को प्यूरीफाई करने के लिए वाटर प्यूरीफायर्स हैं, बड़े बड़े टैंक्स हैं, और आप कहो तो खाने पीने का इतना अच्छा है यहाँ पर इनसाइड, जैसे कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आपके पास हैं तो कैंडीज हैं, कुछ एनर्जी बार्स हैं जिसके अंदर बिल्कुल शुगर नहीं है, ऑयल्स हैं जिससे आप अपने बालों को ग्रोथ दे सकते हैं, उसके साथ साथ आपको कह लें कि लेदर के कपड़े हैं, पर्सेस हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बेडशीट्स हैं, कुछ ऐसी रीजनेबल बेडशीट्स हैं जो, और हैंडलूम्स हैं क्योंकि हमें जो बाहर दिखती हैं वो कॉटन की होती हैं, प्योर होती हैं, बट यहाँ पर जो हैंडलूम्स होती हैं वो बहुत रेयरली मिल पाती हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से मिल रही हैं रिया। और पिछले दिनों हमने देखा कि प्रणय जैन रेगुलरली म्यूज़िक का कमाल शोज़ कर रहे थे और सब लोगों ने देखा, मैजिक शो हो रहा था यहाँ पर, क्रुमानिया डांस ग्रुप आ रहा था, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा था जिसमें लोग कहते हैं ना कि अपना थोड़ी सोच को बदलते हैं और कहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ आती है तो ये चीज़ें ऑन द स्पॉट चाहिए होती हैं, तो उसमें भी बहुत लोगों ने मिलजुल कर और कहते हैं बढ़ चढ़ कर साथ दिया। और फैशन शो हुआ कानमा की तरफ से, टाइमलेस ब्यूटी शानदार प्रोग्राम हुआ, और रिया जो 16th ऑफ अगस्त आज का दिन है, आज मॉरिशस नहीं भूलने वाला है क्योंकि इवेंट्स वर्क्स और तनुश्री इवेंट्स आज दोपहर से लेकर आ रहे हैं मॉरिशस डांस आइडल सीजन 4। इतने सेलिब्रिटीज होंगे क्या बताऊं, यहाँ पर चेयर्स जो अभी इस समय खाली दिख रही है उन लोगों ने उसको सिक्योर्ड रखा हुआ है कि जो शो देखने आएंगे, बस क्योंकि इंडिया से स्पेशल हमारे एक जज आए हैं जिनका नाम है धर्मेश सर, और वो जज की सीट पर बैठेंगे और बहुत सारे जजेस होंगे और देखेंगे आज कौन हीरो बनेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा 3 बजे से लेके और एक एक करके जितनी भी परफॉर्मेंसेज होंगी डांस की वो चलेंगी। और मैं तो कहती हूँ आज स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज सब कुछ बंद है तो घर पे क्यों बैठना रिया, मैं तो सबको इन्वाइट करना चाहती हूँ SBICC Pai, आए बच्चों को दिखाइए, उनके अंदर कुछ नया टैलेंट बनता है, नया जागता है, कईयों को पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं आगे चल के, तो यहाँ पर देखेंगे जिनको बिजनेसेस करने हैं या डांस करने हैं, सिंगिंग करनी है, तो आइए इंजॉय कीजिए, हम सब साथ हैं, पूरी MBC की टीम साथ है, और यही मैं कहूँगी कि बिल्कुल मिस मत कीजिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, खरीदना है तो खरीदिए, देखना है तो देखिए, इंजॉय करना है तो इंजॉय करिए, फूड की कोई कमी नहीं है, बस रेडी होइए और आ जाइए, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तक सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हो रखे हैं रिया, तो मैं तो आपको भी बोलूँगी, MBC को बोलो आ जाओ, सारे जने इंजॉय करते हैं सारे मिलजुल के, और SBICC हमेशा आपके साथ है और इवेंट्स वर्क्स आपके साथ है। थैंक यू रिया।
0: थैंक यू सो मच पूनम।
2: रेडियो मस्ती। एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.
2: चलिए जी, इसी गाने के साथ इस टाइम फॉर मी टू से बाय टू ऑल ऑफ यू. आशा करती हूँ दैट ये म्यूजिकल सफर आपको पसंद आया. हमारी मुलाकात जल्द ही होगी. तब तक यू टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी संडे. एंड बच्चों को हम विश करेंगे बन आते एज वेल. आप ठीक से स्कूल जाना एंड बी हैप्पी. बाय बाय, टेक केयर.

0: 30 वर्षीय कैदी अविनाश अमगुदी की मौत फांसी लगने से दम घुटने के कारण हुई थी। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादीन और प्रेम चमन द्वारा कल किए गए पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि हुई है। अविनाश अमगुदी को कल सुबह मेलगो स्थित उसकी कोठरी में मृत पाया गया था। वह वर्ष 2006 में लालमाटी में दो भाभियों इंदिरा और आशा जरी की दोहरी हत्या के मामले में 37 साल की जेल की सजा काट रहा था। मुकदमे के दौरान उसने इस अपराध में अपने चाचा राजेश रामलोगन को भी शामिल बताया था। राजेश रामलोगन भी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस की कथित बर्बरता का आरोप लगा था। इस मामले में एमसीआईटी के 3 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दी गई थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी यानी सादेक के 46वें साधारण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कल सोमवार 17 अगस्त को करेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि क्षेत्र में बदलाव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अधिक न्यायपूर्ण विश्व की दिशा में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि के रूपांतरण और महत्वपूर्ण खनिजों के माध्यम से लचीले, टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में साझा हित के मुद्दों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं, विशेष रूप से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा तथा व्यापार पर चर्चा होगी। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। मत्स्य मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार क्षेत्र में अवैध, बिना सूचना के और अनियमित रूप से की जाने वाली मछली पकड़ने की गतिविधियों से हर साल $5 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है और अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी पोर्ट निगरानी प्रणाली VMS 2005 से मौजूद है। ये नया सुधार इस प्रकार फिशरीज एक्ट 2023 के तहत 2024 में मजबूत किए गए नियामक ढांचे का पूरक है, जिसमें विशेष रूप से VMS स्वचालित पहचान प्रणाली यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में इस सप्ताह आए शक्तिशाली तूफानों के बाद इंडियाना में कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के मुताबिक तूफानों ने क्षेत्र के कई राज्यों को प्रभावित किया है। इंडियाना के गवर्नर माइक ब्राउन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राज्य की ओर से की गई राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा की मांग को मंजूरी देंगे। इससे तूफान से प्रभावित लोगों और इलाकों के लिए संघीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उधर बेल्जियम के सबसे बड़े प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र हाइफेंस में लगी भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रही हैं। शुक्रवार से लगी इस आग ने शनिवार तक क्षेत्र के करीब एक तिहाई हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और स्थानीय अधिकारियों ने इसे देश के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग बताया है। आग के घरों तक पहुंचने के खतरे को देखते हुए आसपास के 2 गांवों के निवासी को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। आग पर काबू पाने में मदद के लिए यूरोप के विभिन्न हिस्सों से पानी की बौछार करने वाली विमान और हेलीकॉप्टर भेजी गई है। वालोनिया के क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार दोपहर तक आग नियंत्रण से बाहर थी। उन्होंने कहा कि घरों तक आग पहुंचने का खतरा है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों को तैनात किया जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती
1: 11:11 हुए हैं जू मेक विश वेलकम बैक टू RM2 रेडियो मस्ती बॉली ब्रंच का सफर शुरू हो गया है एंड इट्स निर्मनी फॉर यू 2 बजे तक तो यही पर आप स्टे ट्यून रहना क्योंकि अमेजिंग गानों के साथ साथ आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी होंगे सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय कीजिए इस नेक्स्ट गाने को
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799378। हर कोड़ी फैशन।

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे ये गाना था स्पेशली हमारी दोस्त विमी के लिए जो बस से ट्रैवल कर रही है अभी। उसे रोमांटिक गाना सुनना था और शिद्दत मूवी का ये गाना तो रोमांस से भरी हुई है। होप यू एंजॉयिंग विमी जी एंड वाइबिंग विद योर RM2 रेडियो मस्ती। ऐसे ही साथ देते रहिए। डू नॉट हेजिटेट, अगर आपके पास है कोई स्पेशल मैसेजेस या डेडिकेशंस हम चलाएंगे आपके लिए। आपको बस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना है 5499124 पर।
0: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: Holly Branch, RM2, Radio Masti.
1: वैसे संडे का परफेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है नो रश, गुड खाना, गुड म्यूजिक और अपने फेवरेट लोग। लो बन गया परफेक्ट संडे। अगर अभी आप किचन में हैं, ब्रेकफास्ट या लंच बना रहे हो, तो हम आपका म्यूजिकल सू शेफ हैं। आप बस कुकिंग संभालिए, म्यूजिक को हम संभालते हैं। चलिए कि ऐसा गाना हो जाए जो संडे मॉर्निंग को और भी सुंदर बना दे। तो एक बार फिर शिल्पा राव की आवाज में नया वाला गाना आपको वाइब कराने के लिए ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: अब जो ये नेक्स्ट गाना आपके लिए ला रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके संडे का मूड पहले से ही फिल्मी हो चुका है। थोड़ा रोमांस है, थोड़ा मेलोडी और फुल बॉलीवुड फील्स है। तेज मूवी किसको याद है, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, चलिए परखते हैं कि आपके पास बॉलीवुड नॉलेज कितना है। 5499124 पर डू सेंड अस योर मैसेजेस एंड ऑल्सो वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस नेक्स्ट गाने के साथ संडे और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: RM2 Radio Musti.
1: 11:56 on your RM2 Radio. मिलेंगे जल्द ही फ्लैश न्यूज के साथ. अभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये प्यारा सा गाना.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे है। जी सुंदर संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अशिता नमस्कार।
6: नमस्कार नीलमणि श्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त

समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। कल मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम सहित मॉरिशस राजनीतिक व राष्ट्रसभा के सदस्यों ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। ये अवसर रहा भारत मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का और उसको मनाने का। प्रधानमंत्री डॉ.

0: लगाने के लिए जहाज निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फारे के विलय यानी फ्यूजन का किसानों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हो सकती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MFDC इस साल अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और मॉरिशस में विदेशी फिल्म निर्माण को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी लेबनन में इसराइल हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार जून में तनाव कम करने के उद्देश्य से समझौते की घोषणा के बाद ये हमलों के सबसे घातक दिनों में से एक हैं। लेबनन की प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के अनुसार बेरूत से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण में अंसार के बाहरी इलाके में एक मकान पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई। सरकारी मीडिया के मुताबिक मृतकों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसराइल रक्षा बलों ने कहा है कि उसने हिजबुल्ला के एक कमांडर को मार गिराया है। इसराइल के अनुसार ये कार्रवाई उसके सैनिकों पर हुए एक हमले के बाद की गई। IDF ने यह भी कहा कि कमांडर के परिवार के सदस्य, जिन्हें उसके मुताबिक वह मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, घटनास्थल पर मौजूद थे और वे भी प्रभावित हुए हैं। शनिवार को बाद में डेर अल जहरानी शहर पर एक और दौर के हमले हुए। लेबनन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 4 लोगों की मौत हुई और 5 अन्य घायल हुए हैं। और उधर अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में इस सप्ताह आए शक्तिशाली तूफानों के बाद इंडियाना में कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के मुताबिक तूफानों ने क्षेत्र के कई राज्यों को प्रभावित किया। इंडियाना के गवर्नर माइक ब्राउन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राज्य की ओर से की गई राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा की मांग को मंजूरी देंगे। इससे तूफान से प्रभावित लोगों और इलाकों के लिए संघीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। अल्बाथ्रोस स्ट्रीट पॉइंट में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सैमावती गौरी रामनुत, जिन्हें राजकुमारी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:16 पर उनके घर पुंतुसाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ऋषियों के शमशान होम में ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:16 PM। 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री मुरेंद्रनाथ सिंह सोहन, जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे लाशापेला दौन दुमुआ पिछित से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदिगौद की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

नहीं कहीं पर ही यही रहना कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ, क्योंकि इस आओ में गाने के साथ साथ घुमाने भी लेकर जाएंगे स्टूडियो के बाहर। सो स्टे ट्यून यही पर आर एम टू रेडियो मस्ती पर 2 बजे तक। इट्स नर्मनी फॉर यू एंड योर बॉली ब्रांच।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: हाँ, ये था अमेजिंग गाना संडे को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए. 12:25 हुए हैं. थोड़ी ही देर में आज प्रॉमिस्ड ले जाएंगे स्टूडियो के बाहर. अभी के लिए मैसेजेस चेक कर लेते हैं. वी हैव मनीषा जी जो अभी लंच प्रिपेयर कर रही है और नेक्स्ट ट्रैक मांग रही है अपनी बेटी अवनी और पति रोशन के लिए. एंड यस, हमने गाना चलाया था तेज मूवी से और बताया था आपको अगर आपके पास है आंसर्स कि उस मूवी में कौन कौन से एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे. एंड आपने हमें बता दिया कि उसमें था अजय देवगन और कंगना. नाम नहीं बताया बस, लेकिन जब मैसेजेस भेजते हो ना आप तो नाम लिख दिया करो यार, क्योंकि आपको जानना भी अच्छा लगता है आपका नाम लेकर रेडियो पर. सो नेक्स्ट टाइम यू मैसेजेस अपना नाम भी लिख लेना. अभी के लिए नेक्स्ट गाना करते हैं टू ऑल दोस जो कनेक्टेड है साथ में RM2 रेडियो मस्ती पर.
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: RM2 Radio Musti.
1: Yes, as promised, चलते हैं स्टूडियो के बाहर डायरेक्शन SBICC पायर, जहां पर हमारी आरजे पूनम और ज्यादा डिटेल्स बताने वाली है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल में क्या क्या हो रहा है. सो लेट्स फाइंड आउट. हेलो पूनम.
2: हाय नीलमणि, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
2: बहुत बढ़िया. यहाँ का जो माहौल है ना, मैं आपको नीलमणि क्या बताऊँ, यहाँ पर जो धमाका, जो प्यार, जो मोहब्बत मिल रही है, चाहे कस्टमर से ले लीजिए, चाहे जितने भी हमारे एग्जिबिटर्स हैं उनसे ले लीजिए, सब एक दूसरे को इतने प्यार से ग्रीट कर रहे हैं और इतने प्यार से एक दूसरे को जो अपने नए प्रोडक्ट्स लाए हैं, क्योंकि ये 12 से 16 तारीख तक चल रहा है और आज लास्ट डे है, तो जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लास्ट मोमेंट पर, कहते हैं ना वो छोटा सा बट धमाके वाली चीज़, तो वो आज दिखा रहे हैं. और यहाँ पर जो सबका जोश है, यहाँ पर सारे लोग इतना खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके सबके हाथों में इतने बैग्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए इंसान बाहर बाहर घूमता है, या आप कह लीजिए कि दूसरी कंट्रीज में जाके फाइंड आउट करता है कि मिले, और उसके बाद उनको इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, उनको लाना पड़ता है, ढूंढनी पड़ती है शॉप्स, और फिर लास्ट मोमेंट में उनको वहाँ तो मिल जाती है, बट एक ही छत के नीचे ये सब कुछ लेकर आ गए हैं. उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल, जो कि आज आखिरी दिन पर है, पावर्ड बाय SBI, ML, NLIC. और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ नीलमणि, इतनी चीज़ें हैं, जैसे वैरायटी है, चाहे आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ले लो, मैट्रेसेस से ले लो, सोफा, डाइनिंग टेबल, खाने पीने की चीज़ें, सोलर लाइट्स, अगर आप फैंस बोलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ़ैन हैं, पूजा शॉप्स का सामान है, और बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्टन्स बहुत सारे हैं, वाटर प्योरीफायर में, क्योंकि अभी पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है, तो उसके लिए पानी आपको प्योरीफाई करके पीना है, तो ये चीज़ें लास्ट मोमेंट पे आपको मिल रही हैं. और किचन यूटेंसिल्स इतने सारे हैं, टिश्यूज हैं, पूजा का सामान है, बहुत क्वालिटी के बैग्स हैं यहाँ पे, चाहे आप उसके अंदर छोटे छोटे से मोती

0: कह लो, चाहे उसको लेदर प्रोडक्ट्स कह लो, बेल्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बड़े बड़े, जैसे किसी ने नई कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे होटल्स की करनी है, चाहे आप कह लो घर की करनी है, किसी को बड़ा रॉयल फील चाहिए होता है ना, तो वहाँ पर बहुत बड़े झूलों के साथ में बड़े बड़े डोर्स हैं, अगर आप डोर्स को देखेंगे, कपबोर्ड्स हैं, लकड़ी के पुराने ज़माने की जो कार्विंग होती है ना, जो बहुत ही यूनिक होती है और बहुत एक्सपेंसिव लाना पड़ता है जब आप दूसरी कंट्री से लाते हैं, पर यहाँ पर सब कुछ नीलमणि एक छत के नीचे मिल रहे हैं। और अगर आप बात करें खाने पीने की, तो खाने पीने की भी बहुत आइटम है, आप नीचे जो उन्होंने फूड कोर्ट बनाया हुआ है उसके अंदर तो ऑल टाइप्स की चीज़ें हैं, बट यहाँ पर जो इनसाइड है, अगर आपको शुगर फ्री कुछ चीज़ लेना है, या आपको अलग अलग तरह की चाय लेनी है, जैसे किसी को नींद की प्रॉब्लम है, या किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, किसी को नहीं आ रही होती है, किसी को एनर्जी चाहिए, किसी को कूल डाउन करना है अपने आप को, तो अलग अलग तरह की चाय
1: सब कुछ
0: यहाँ पर,
1: वहाँ पर
0: सब कुछ एक ही छत के नीचे एक ही टेबल पर, कहते हैं कि ये एक टेबल बन गया है और बस ये सारे जने आ रहे हैं और यहाँ पर पसंद कर रहे हैं अपने अपने घर के हिसाब से जिसको जो चीज़ चाहिए होती है। और अभी आपको मैं बता दूँ कि इस समय प्रणय जैन का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है, जो एक्साइटमेंट है, जो तालियां बज रही हैं, जो गड़गड़ाहट हो रही है वहाँ पे, और वो
1: यहाँ से आवाज आ रही है,
0: थैंक यू, यहाँ पे सच में ऐसे ही हाल है। और क्या कहते हैं, आपको मैं और बताऊँ ना, अभी पहले अभी थोड़ी देर के बाद धर्मेश सर आने वाले हैं और 1 बजे से एक कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और 3 बजे के बाद जो कि इवेंट्स वर्क्स और तनुश्री इवेंट्स जो लेकर आ रहे हैं मॉरिशियस डांस आइडल सीजन 4, जो कि सेलिब्रिटी की कतारें लगी पड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, स्पेशली यहाँ पर जो आ रहे हैं इंडिया से आए हैं धर्मेश सर, कहते हैं इंडियन आइडल की जान है, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही कहते हैं ना ज़मीन से उठकर आसमान का तारा बन गए हैं, वैसे ही वो भी चाह रहे हैं कि मॉरिशस में भी जितने हमारे तारे सितारे हैं वो क्यों यहाँ पर ही रहें, वो क्यों ना इंडिया जाएं, या बड़े बड़े और प्लेटफॉर्म पर उनको कुछ करने को मिले, कुछ दिखाने को, अपने जो मूव्स हैं उनके डांस स्टाइल्स हैं वो दिखाने को मिले। तो यहाँ पर इस समय मैं कहती हूँ भविष्य की प्लानिंग यही है कि उन लोगों के लिए हम तो कहेंगे बेस्ट विशेज, पर आप जो भी लोग इस समय लिसनर्स हमारे RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप घर में मत बैठिए, क्योंकि आप देखिए कि आज हॉलीडे है, संडे का दिन है और बच्चों की छुट्टियां हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, और आप घर में बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं, आ जाओ यहाँ पे, हमारी पूरी MBC की टीम है हमारे साथ में, हमारे डोमिनिक है, और डोमिनिक इतनी उनकी प्यारी सी स्माइल है ना हमारे जो साथ में कर रहे होते हैं, तो जब उनकी एनर्जी मिलती है तो और अच्छा लगता है। और इसके साथ में आपको बताऊँ ना कि SBI CCPI ने जितना तरीके से इतना
1: ब्यूटीफुली
0: चल रहा है, ब्यूटीफुली सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भागम दौड़ या कोई एक के ऊपर एक चल रहा है, ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम से चल रहा है। आप बुजुर्ग पेरेंट्स को लेकर आ सकते हैं, आप खुद आ सकते हैं, अगर आप कुछ घर वगैरह बना रहे हैं तो बिल्कुल घर पे मत रहिए, ये लास्ट चांस है, 16 तारीख आखिरी दिन है, उसके बाद आप धर्मेश सर की परफॉर्मेंस के साथ साथ आप अपने स्टार्स को जो न्यू बनने वाले हैं उनको देख पाएंगे, तो बस इंजॉय कीजिए, हमारे साथ तो आप हैं पर यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको और इंजॉयमेंट मिलेगी। मैं तो इतना ही नीलमणि कहूंगी सभी को कि घर में मत रहिए, आ जाइए, हम
1: तो
0: यहीं पर
1: हैं। आप कब तक वहां पर रहने वाले हैं?
0: आज मैं यहां पर 5 बजे तक रहने वाली हूं, हाँ, बट उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहां पर 9 बजे तक होने वाला है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, अभी सब पेंडिंग पड़ी है, अभी आपका टाइम है, बहुत टाइम है, 3 बजे हम शुरू करेंगे, वो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो अपने घर के बाकी सारे काम निपटा के आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और अपना थोड़ा मूड बना सकते हैं, और फिर कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है, ये टाइम अपने लिए है, इंजॉय कीजिए। थैंक यू नीलमणि, आपके लिए
1: थैंक यू सो मच पूनम जी। तो आपने सुन लिया कि पूनम ने किया क्या, कहा, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, वो भी एक छत के नीचे, सो देर ना करिए, जल्द से चलते हैं SBI CCPI पर।

0: Party Brunch RM2 Radio Masti.
1: It's 12:45 RM2 Radio Masti par rahein. दोस्तों आपको पता है संडे को एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, आपको हर वक्त प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है. सो आज ब्रीद कीजिए, स्माइल कीजिए, कुछ यमी यमी खाइए और म्यूजिक को अपना संडे कंपेनियन बना दीजिए. अब चलिए आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ इस संडे आफ्टरनून को बनाने वाले हैं और भी अमेजिंग. एंड अगर आपके पास कोई डेडिकेशन है, स्पेशल मैसेज है किसी स्पेशल इंसान के लिए, तो आप हेजिटेट ना करें. 5499124 पर डू सेंड अस योर मैसेजेस एंड आपको बारी बारी तक लेकर जाएंगे घुमाने SBICC पाए, क्योंकि वहाँ पर पूनम है और वो हमें अपडेट्स देती रहेगी.
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: Holiday Brunch RM2 Radio Masti.
1: And yes, it's your RM2 Radio Musty Bolly Brunch में जाने से पहले आपके साथ दो चार बॉलीवुड गॉसिप्स शेयर कर लेती हूँ. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आवर अपन 2 का मूवी अभी बहुत ट्रेंडिंग है. बहुत से लोग एक्साइटेड है मूवी को देखने के लिए. एंड दीपिका रणवीर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड बेबी को वेरी सून. एंड ऐसा के आ जाए टाइगर का एड कंट्रोवर्सी सबसे चटपटे गॉसिप्स है फॉर द टाइम बीइंग. बॉलीवुड में संडे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता बॉस. यहाँ पर मंडे से पहले ही पूरा हफ्ता का गॉसिप मिल जाता है. तो आप बस यही पर आरएमजू रेडियो मस्ती पर जुड़े रहिए क्योंकि आपके लिए हंसनी आने वाली है नेक्स्ट और भी बॉलीवुड गॉसिप्स के साथ इन योर बॉली ब्रंच. हैव अ ग्रेट डे अहेड.
0: बॉली ब्रंच आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Wishing you all a very good afternoon. Check your time. It's 1 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी के साथ. आपको नमस्कार.
4: नमस्कार हंसनी, सभी को नमस्कार. 16 देश साझा चुनौतियों और हितों पर विचार विमर्श करने के लिए एकजुट होंगे. सादिक शिखर सम्मेलन सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में शुरू होगा. ये क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक होगी. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इसमें हिस्सा लेंगे. सैडेक सम्मेलन के साथ खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस परिणाम की उम्मीद है. भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय उच्चायोग द्वारा कल शाम त्रियानो कन्वेंशन सेंटर में एक स्वागत समारोह लगाया गया. गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी सहित कई गणमान्य अतिथि इसमें उपस्थित रहे. अपने संबोधन में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तवा ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का नेतृत्व आपसी विश्वास और समझ के उच्च स्तर पर आधारित है. उन्होंने शागोस के संरक्षित समुद्री क्षेत्र के विकास और निगरानी से जुड़े नए रणनीतिक साझेदारी समझौते का भी उल्लेख किया. अनुराग श्रीवास्तव ने मॉरिशस के बंदरगाह के आधुनिकीकरण

पुनर्गठन और पुनर्गठन से संबंधित सहयोग का भी जिक्र किया। बेल्जियम अपने इतिहास की सबसे भीषण आग में से एक से जूझ रहा है। आग कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रही है। 110 से अधिक दमकल कर्मी आग बुझाने के अभियान में जुटे हैं। रविवार सुबह हेलीकॉप्टर भी राहत और आग बुझा

0: पानी के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत कर्मी नौकाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें इंडियाना पुलिस में व्हाइट रिवर के किनारे स्थित इलाकों में फंसे लोग भी शामिल हैं। इसके साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: कालीमाई गली कांपेशेयर ग्रैंड रिवियर सुदेश में 69 साल की 69 ईयर ओल्ड श्री हरि प्रसाद जंगली जो राज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान कालीमाई गली कांपेशेयर ग्रैंड रिवियर सुदेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए डेफ्रेयर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11 AM। पेचित रिविया में 65 साल के 65 ईयर ओल्ड श्री मुनेंद्रनाथ सिंह सोहन जो सुनील से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे लाशापेल औदौत मोगा पेचित रिविया से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोडेगाट की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिल हमदर्दी है।
2: RM2 रेडियो मस्ती
3: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती
1: बिल्कुल यहाँ पर गाना है टू कम टू रेडियो मस्ती आने के लिए तो ये जो शुरुआत है हो गई है हम तो आ गई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए हंसनी का साथ ऑन रेडियो मस्ती सभी का वेलकम आई विश ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून लेट अस सेलिब्रेट संडे आफ्टरनून विद रेडियो मस्ती 1:07 हो गया है चलिए यहाँ पर जो म्यूजिकल शो है उनको हम आगे बढ़ाते हैं थैंक यू नीलमणि जो यहाँ पर थी हमारे ब्यूटिफुल आरजे शिवस हियर फॉर बॉली ब्रंच और अब ये जो मूड अच्छा गया है सुबह से उनको बस जारी हम रखने वाले हैं तो सभी का स्वागत हैप्पी वीकेंड एवरीवन कैसे हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर रियली होप कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है सब कुछ अच्छा है और पूरे हफ्ते की भगदौड़ के बाद आखिरकार वीकेंड आ ही गया ना तो बताइए आज क्या प्लान है आराम घूमना या दोस्तों के साथ धमाल वैसे अगर आपका जवाब है कुछ भी नहीं तो बस घर पर आराम करना है तो यहाँ पर जो म्यूजिकल सफ़र है आप लोगों का साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार विद ग्रेट गाने लाजवाब सॉन्ग्स टू एंटरटेन यू एंड इट्स लाइक ऑसम वीकेंड यहाँ पर सुहाना मौसम है कई जगहों पर धूप खिली हुई है रेडी एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल मौसम स्पेशली बच्चों के साथ इट्स लवली वीकेंड क्योंकि कल से बैक टू स्कूल कल से थर्ड टर्म की शुरुआत होने वाली है सो दैट विल बी फुल फोकस फुल कंसंट्रेशन एजुकेशन लेवल जो बिल्कुल हाई रहने वाला है लेकिन इससे पहले एक ब्रेक यानी कि आज बच्चों के साथ एक स्पेशल टाइम मे बी यू आर टेकिंग देम टू द सी साइड यू नो यहाँ पर वो स्विम करेंगे अपने दिमाग को एकदम फ्रेश करेंगे तो उन सब के लिए एकदम अच्छा रहेगा टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी कल से तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है सम हैपनिंग्स ऑन योर साइड इसके लिए हम सुनी है एंड आई विल बी वेटिंग आपका इंतजार हम करने वाले हैं ऑन 5491294 फॉर ऑल योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस सो चारों ओर जहाँ पर भी रेडियो मस्ती की गूंज है इट्स अ वार्म वेलकम
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti.
1: इट्स अ ब्राइट सनी आफ्टरनून और यहाँ पर वीकेंड को सजाती हुई आपके साथ हंसनी. तो आज एक छोटा सा काम कर लीजिए, करेंगे यहाँ पर फॉर योर सेक टू बी लाइक हैप्पी, अपने आप को देने के लिए कुछ खुशियाँ. अपना जो पसंदीदा गाना है वो बस लगा लीजिए जो चलने वाला है ऑब्वियसली ऑन रेडियो मस्ती. और अगर आपने ले लिया है अपना ब्रंच या फिर आपने सोचा है कि ब्रेकफास्ट के बाद सीधे लंच की ओर आप बढ़ेंगे सो ये भी चलेगा. यहाँ पर इस खूबसूरत दिन को बस उनका आनंद उठा लीजिए. वी हैव गॉट ओनली द बेस्ट टू गिव यू राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. सो एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर स्पेशल मूड. एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है. वो द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स जो हम लेकर आ रहे हैं टू एंटरटेन यू. और साथ में आ गए हैं आपके मैसेजेस एज वेल. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द रेडियो मस्ती. आज बहुत ही खास दिन है पल्लवी के लिए जो पिछित रिविया की रहने वाली है और आज उनकी मगनी होने वाली है, सगाई होने वाली है. कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम मौसा विकी, मौसी कीर्ति, अवनी और साथ में है वंश और सुया यो जो आई है फ्रॉम कुंगुमा. सेइंग हेलो टू एवरीवन. और पल्लवी को बस देना चाहेंगी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. बधाइयाँ है टू पल्लवी जो आज बिल्कुल अपने स्पेशल दिन को मनाने वाली है. आज उनकी सगाई है. लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू डियर और विश यू ऑल द हैप्पीनेस जो न्यू जर्नी सेट होने वाला है आपके लिए. वी हैव आशा. हेलो जी, ब्यूटीफुल वेलकम टू यू. रियली होप कि सब ठीक है. एंजॉयिंग दिस वंडरफुल डे एट द सी साइड. एंड यकीन मानिए हंसनी, जब ये म्यूजिकल गूंज है यहाँ पर जो दिन है कुछ और जबरदस्त हो ही जाता है. दैट्स सो नाइस ऑफ यू आशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. और यहाँ पर गाना हो जाएगा आपके पति आनंद के लिए जो आपके साथ है. एंड साथ मिलकर एंजॉयिंग अ कॉफी एट द सी साइड. और क्या चाहिए जब बैकग्राउंड में ऐसे दमदार म्यूजिक है और हाथ में कॉफी है और आपके सामने सी साइड का नज़ारा है, तो और क्या चाहिए इस वीकेंड को और भी जबरदस्त बनाने के लिए. स्टे वेल कनेक्टेड.
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

स्टे वेल कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती जो बन रहा है हमारा और आपका हम सफर। वैसे वीकेंड सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्पेशल लोगों के साथ हंसने और खूबसूरत यादें बनाने के लिए भी तो है, इसीलिए अपनों के साथ बिताए हुए लम्हों को हम कैद करने जाएंगे। ऑफकोर्स टू मेक इट मोर प्रेशियस, खास हम खास बनाएंगे इस वीकेंड को। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स राइट हियर इन बॉली ब्रंच। यहाँ पर है हंसनी जो आपके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है सिंस 1 PM और उम्मीद है कि जो हमारे गाने हैं यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स टू एंटरटेन यू, आप पसंद कर रहे हो और इसके साथ बस आप ही झूम रहे हो, गा रहे हो, गुनगुना रहे हो और क्या, टू मेक इट वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बॉली ब्रंच।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: Welcome in the energy of Bali Brunch happening on Radio Masti. Thank you for connecting with the best of songs. तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए कि आपकी खुशी की वजह क्या है? एक अच्छी सी चाय या आपका पसंदीदा गाना या किसी खास इंसान की मुस्कान? जरा सोचिए एंड डू लेट मी नो 1059912194। यहाँ पर किसी ने कहा है अच्छा सा गाना अगर चल जाएगा तो मूड बनेगा। यहाँ पर सोनू जी का साथ है और आप तो हो फ्रॉम पोर्ट लुइस। आज इट्स क्वाइट हॉट, कुछ गर्मी महसूस हो रही है, दैट्स नाइस। मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑसम मौसम। और यहाँ पर गाना है आपकी प्यार सपना के लिए। आज सपना जी का जन्मदिन है, मिलकर धूमधाम से मनाएंगे जन्मदिन को। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। और स्पेशल सॉन्ग तो चलने ही वाला है। वी हैव इट फॉर मामा अनसुया के लिए, शी इज सेलिब्रेटिंग हर 60 इयर्स। लॉट्स ऑफ गुड विशेस आपके लिए, ब्लेसिंग्स एंड प्यार लेकर आए हैं आपके पति देव सूर्यवंश। और साथ में है आपके दो बेटे हंस और यश। और सभी विदेशी परिवार यहाँ पर आए हैं टू कन्वे द बेस्ट विशेस आपके लिए। हैप्पी बर्थडे के ढेर सारे गुड विशेस है, बधाइयाँ है आपके लिए। हैप्पी बर्थडे के गुड विशेस। We have it for Nandini के लिए, celebrating wedding anniversary आज अपने प्यारे विराज के साथ। और उन्होंने सोचा है why not एक छोटा सा मैसेज और गाना भी हो जाए उनके हम सफर के लिए। बिल्कुल, you are a 90s lover, तो एक गाना आप सुनना चाहेंगे। That will be after 2 PM, हम लेकर आएंगे आपके लिए एक beautiful 90s। लेकिन meanwhile जो गाना है ना वो बेशक आप दोनों के लिए चल जाएगा। Let us be part of this lovely celebration जो हम बिल्कुल इसमें शामिल होने वाले हैं। और यहाँ पर गाना है फॉर कीर्ति के लिए as well। Thank you कीर्ति for sharing your good wishes। यहाँ पर वंश के लिए एक गाना जो आपका प्यार है। और सुबह से पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया है, सुबह से वो इतने बिजी है कि उनका मैसेज ही नहीं आया है। आई एम मिसिंग हिम वेरी मच। तो उनके लिए गाना हो जाए एंड रियली होप कि गाने को सुनकर वो फिर से वापस आएंगे टू टेक्स्ट यू। एंड फिर से जो प्यार है वो और भी गहरा हो जाए आप दोनों के बीच में। राइट, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे वेल कनेक्टेड फॉर मोर म्यूजिक जो अभी चलने वाला है राइट अवे ऑन रेडियो मस्ती।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Yes, definitely. Double dose of Masti right here on our Bollywood radio station. Hamara aur aapka Radio Masti jo bilkul aap logon ke saath hi hai. अब इशारा है ठीक 2 बजे सुनेंगे संक्षिप्त समाचार और इसके बाद बिल्कुल और एक सफर जो हम तय करने वाले हैं आपके साथ अप्टिल 4 PM दैट विल बी आज का प्लग एंड प्ले जहां पर हम लेकर आएंगे कुछ और मैजिकल सॉन्ग्स इसके लिए स्टे वेल कनेक्टेड यहां पर है हंसनी जो आपके साथ है स्टे वेल ट्यून्ड फॉर मोर म्यूजिक

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Wishing you all a very good afternoon. I check your time. It's 2 p.m. संक्षिप्त समाचार को सुनते हैं करुणा जी के साथ. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे सादिक के 46वें सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कल सोमवार को होगा और इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे. शिखर सम्मेलन से इतर डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अन्य राष्ट्र नेताओं से मुलाकात भी निर्धारित है. इन बैठकों में साझा हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी, खासकर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर. मॉरिशस अवैध मछलीमार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जहाजों की निगरानी और अधिक सख्त कर रहा है. मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार इस गतिविधि के कारण क्षेत्र में हर साल $5 बिलियन से अधिक का नुकसान होता है. इन नियमों का मकसद वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करना है, जो मॉरिशस में 2005 से लागू है. विदेश में यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रात भर रूस की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है. दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है. यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस की 3 मिसाइलों और करीब 100 ड्रोन को मार गिराया. रूस में ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के एक और गोदाम को निशाना बनाया गया. इस कंपनी को अक्सर रूस का अमेज़न कहा जाता है. गवर्नर ने इसे शहर को निशाना बनाने वाले हाल के सबसे बड़े ड्रोन

तीनों में से एक बताया है। और जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने डराने धमकाने और अपहरण की खबरों पर चिंता जताई है। मतदान केंद्रों पर हुई हिंसा के कारण

0: MBCRadio.tv. MBCRadio.tv. कत्र बोरोड बुनाके में 77 साल की 77-year-old श्रीमती मुनिया दुखी पैदाइश नाम तूफानी जो हसवंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 2 बजे इनकी बेटी कविता दुखी के मकान कत्र बोरोड बुनाके से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावांचुए की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कौ बुम्बई लेन नंबर 3 वाकवा में 81 साल की 81-year-old श्रीमती शकुंतला गोपाल पैदाइश नाम तुकाराम जो आकामानु से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:15 इनके मकान कौ बुम्बई लेन नंबर 3 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए ट्वामा मेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिल हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: प्लग एंड प्ले
1: RM2
2: प्लग एंड प्ले

0: Plug and play.
1: RM2.
2: चले बनाने यहाँ पर आशियाँ हम सबके साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से हनरेट मस्ती यहाँ पर आज हंसनी एंड बिल्कुल तैयार रेडी आपके साथ अब चल 4 PM टू बी विद यू हम सफर हम बन जाएंगे इन प्लग एंड प्ले और आशियाना तो है ही यहाँ पर हमारा और आपका रेडियो मस्ती जहाँ पर सुकून है ये प्यार है और हमेशा जो आपकी दोस्ती है जो बिल्कुल पक्की है और एकदम गहरी इसी की वजह से हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं टू मेक इट मोर स्पेशल और आज तो मेरा मंत्र है यहाँ पर कम सोचो ज़्यादा मुस्कराओ और हर छोटे पल को आनंद आप ले लीजिए यहाँ पर ये मौका हम आपको दे रहे हैं टू बी हैप्पी टू स्माइल सही कहा है ना किसी ने कि जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता है लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है और आज तो सारी जो नेगेटिविटी है उनको बोलिए बाय बाय क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है जो गुड वाइब्स है उनको बस वेलकम हम करने वाले हैं आपके साथ मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और अपने आसपास भी खुशियाँ बांटते रहिए अभी जबकि ये मूड इतना हैप्पी है तो छोटी सी जो खुशी है एकदम बड़ी सी लगती है सो वी आर हियर टू मेंटेन दिस हैप्पी मूड जहाँ पर भी आपका साथ जारी है इट्स अ वार्म वेलकम इन आज का प्लग एंड प्ले
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: Keep enjoying the best of songs. ये तो है हमारा Radio Masti, जो आपका हमसफर है, हम सब का हमसफर बन जाता है कहीं ना कहीं. And we are here to make it fun. यहाँ पर big hello to Yuvraj. कैसे हो? Well, I hope you had a great time आज and full energy के साथ अभी घर वापस जा रही हैं. So wish you a safe drive पापा महेन के साथ. And a big hello to Yuvansh as well. वैसे कल third term की शुरुआत होने वाली है ना, लेकिन अभी chill out, अभी रिलैक्स हम करेंगे साथ साथ. लेकिन कल से यहाँ पर स्कूल शुरू, सो इसके लिए बोंकुराज, ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए आपका फेवरेट गाना चल पड़ा है, एंजॉय.

0: plug and play.
1: RM2.
2: यहाँ पे ये दिल इतना बेकरार क्यों है जी? यहाँ पर बेकरारियाँ अगर है तो बता लीजिए. यहाँ पर ये चांस है, ये मौका है, ये सफर है जो आप लोगों के लिए हम तय कर रहे हैं. अगर है कुछ बात, अगर है कोई ऐसी ये फीलिंग्स जो शेयर करने से आपका दिल खुश रहेगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा, सो व्हाई नॉट, वी आर हियर आपके साथ. एंड हमने सोचा है लेट अस हैव सम मैसेजेस. इतना टाइम आप निकलते हो टू सेंड मैसेजेस और इंतजार आप कर लेते हो, तो हमने सोचा लेट्स ब्रिंग इट अर्लियर और कुछ डेडिकेशन हो जाए. हाय, मैं हुशाहीन फ्रॉम पोर्टविस. हेलो माय डियर, वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर गाना आपके लव शमशाद के लिए एंड आपके सभी परिवारों के लिए भी जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है. गुड इवनिंग हंसनी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू यू टू. आई होप कि सब ठीक ठाक. कमलदीप जी, यहाँ पर आप आए हो टू विश एवरीवन गुड संडे. थैंक यू फॉर एंजॉइंग विद द रेडियो मस्ती. यहाँ पर सब कुछ अच्छा, सब कुछ मस्त, लवली गाने जो चल रही हैं, दैट्स नाइस. थैंक यू फॉर सेंडिंग योर अप्रिसिएशन. हाय डियर मैडम, नमस्कार. नमस्कार टू यू टू. वुड लाइक टू विश हैप्पी बर्थडे टू कलीग.

0: सर, आजरा नवरंग का जन्मदिन है आज. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. रिक्वेस्टिंग अ सॉन्ग यहाँ पे ए मेरी नटखटी कॉलेज. अच्छा, इट्स मेरा दिल आशिकाना, ऐसा कुछ है ना. ये दिल आशिकाना मूवी से लिया गया, आई गेस यही तो गाना है. क्योंकि आपका जो मैसेज है कुछ अधूरा सा आया है. आई रिक्वेस्ट यू, अगर हो सके तो प्लीज डू सेंड मी अगेन योर रिक्वेस्ट. अगर चलाएंगे, अगर इसी में बर्थडे गर्ल की खुशी है, सो व्हाई नॉट, वी विल ट्राई इट राइट अवे ऑन रेडियो मस्ती. तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज जहाँ पर अपनों को याद करने के लिए ढूंढ रहे हो, वो सरिया सब बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो. दिस इज रेडियो मस्ती, जहाँ पर सजाती हुई ये महफिल हंसनी है आपके साथ. फॉर आज का प्लग एंड प्ले.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: ट्रैक एंड प्ले
1: और
2: शादी वाला गाना था और ये जो स्पेशल ट्रैक था हमारे सभी फ्रेंड्स के लिए जो आज शादी के बंधन में बन रहे हैं और शादीशुदा जिंदगी के लिए बस हम लेकर आए हैं खुशियाँ। ये हम प्रार्थनाएं करेंगे कि जो आपकी जोड़ी है वो हमेशा सलामत रहे, तकरार ना आए, दरार ना आए, अगर आए भी तो इट्स लाइक शॉर्ट टर्म और जल्द से जल्द यू जस्ट गेट पैच अप और बेशक जो प्यार का सिलसिला है उनको आप जारी रखें। वैसे शादियों के बारे में बात हो रही है, मे बी शादी वाले दिन जो काफ़ी नज़दीक है और इसके लिए यू हैव लॉट्स ऑफ शॉपिंग्स टू डू। क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये सब लिस्ट आपने बना लिया है ऑलरेडी। सो अगर बाय चांस यू आर नियर बाय पाई या फिर आप स्टिल आप घर पे हो और सोच रहे हो कि क्या प्लानिंग है फॉर दिस वीकेंड, सो यू कैन मेक इट हैपन एट उत्सव।

0: इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो बिल्कुल शुरू हो गया है एंड इट्स लाइक ऑन गोइंग अभी तो चलने वाला है 9 बजे तक रात्रि के वक्त. तो अगर आप ढूंढ रहे हो वो सफ़र कहाँ पर आपको जाना है शॉपिंग्स के लिए, सो यू कैन मेक इट अवे, मेक इट पॉसिबल आज एट SBICC पाए, जहाँ पे धूमधाम से इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं इस समय एट SBICC पाए फॉर देयर शॉपिंग्स, कुछ देखने के लिए, कुछ यू नो हैव सम फन बच्चों के साथ. वहाँ पर इतने सारे एनर्जी जोश है, सो मच ऑफ फन फैमिली के लिए, सम एंटरटेनमेंट शोज, सामाजिक शोज होते हैं और आज तो एकदम धमाकेदार शो होने वाला है. स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर जो आए थे कल इन द स्टूडियो एंड सो हम्बल सो काइंड एंड धर्मेश सर के साथ इतने सारे परफॉर्मेंसेस आज होने वाले हैं. सो ये सब जो डिटेल्स है हमें बताने वाली है पूनम, शी इज लाइव एट SBICC राइट नाउ और कुछ ही पल में उनसे जानेंगे कि क्या है लेटेस्ट, क्या है कुछ न्यू यहाँ पर, मे बी कुछ लेटेस्ट प्रोमो यहाँ पर आ गई है आखिरी दिन के लिए. सो ये सब जो डिटेल्स है वो थोड़ी देर के बाद पूनम लेकर आएगी राइट ऑन रेडियो मस्ती.
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2 Radio Musti.
2: 2:47 in the afternoon. Thank you so much for connecting with the Radio Musti. और ये इशारा तो बस आपको मिल गया था कि अभी हम थोड़ा सा घूमने जाएंगे. We'll be heading towards SVICC पाए जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है. चलिए पता लगाते हैं हमारी प्यारी सी पूनम के साथ. Hello पूनम, welcome on Radio Musti.
3: हेलो, थैंक यू सो मच. रेडियो मस्ती हमारे साथ होता है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती. और स्टूडियो में बैठे हो जब आप, तो आपने तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन

इन्विटेशन दिया है हमारे सभी लिसनर्स को, तो मैं क्या बताऊँ, आपने तो बहुत चीज़ों को पहले से ऑलरेडी कवर कर दिया, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी रहती हैं। तो चलिए भैया, हम तो आपको यही बताएंगे, जो भी लिसनर्स हमें अभी सुन रहे हैं और यहाँ का माहौल जानना चाहते हैं, तो SBICC पाए का माहौल बिल्कुल ज़बरदस्त हो रखा है। उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल यहाँ चल रहा है और आज है आखिरी दिन। जो आखिरी दिन होता है ना, वहाँ उसे कहते हैं छोटा धमाका, और इन्होंने इसी तरीके से किया है कि मतलब इतने सारे गोडाउन में सामान कौन रखता है और कहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ एम्प्टी नहीं हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि ये वाला स्टॉल अब ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर अब कुछ नहीं मिलेगा, बट वहाँ पर 5 मिनट लगते हैं कि सब कुछ फिर से भर जाता है। और इतनी सारी चीज़ें, चाहे आप इसमें मैं आपको बताऊँ ना हंसनी, यहाँ पर आप कर्टिन ले लो, मैट्रेसेस ले लो, अगर आपको वुडन थिंग्स चाहिए, जिस तरीके से आपने भी बताया कि अभी नई जो जोड़े शादी कर रहे हैं उनके परिवार को सामान चाहिए होता है, चाहे उन जोड़ों को सामान चाहिए होता है शादी के बाद एक घर के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए चाहिए होता है, वो हर चीज़ मतलब हर रीजनेबल प्राइस में, जो भी एक अफोर्डेबल एक पेरेंट्स को या एक कपल को चाहिए होता है, वो सब कुछ यहाँ पर है। चाहे आप लाइट्स का हो, वाटर प्योरीफायर का हो, किचन यूटेंसिल्स का हो, और चाहे आप पूजा का सामान का हो, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर कहते हैं गणेश चतुर्थी आने वाली है, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। 100-100 रुपये में बहुत सारी डेकोरेशंस मिल रही हैं। यहाँ पे शैंडलेज हैं, यहाँ पे कलर्स हैं शैंडलेज के, अगर आपको गोल्डन लाइट में चाहिए, वाइट लाइट में चाहिए, सब कुछ अमेजिंग है। अगर आपको किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कॉस्मेटिक चाहिए, आपको लेदर पर्स चाहिए, आपको कार्विंग के कोई वुडन थिंग्स चाहिए, या पर्सेज में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, जूट होता है उसमें, क्लॉथ वाइज होता है उसमें, बहुत सारी अलग अलग वेविंग्स होती हैं, सारे तरह के यहाँ पे पर्सेज हैं। लेडीज़ की कॉस्मेटिक ले लो, परफ्यूम्स कह लो, और उसके बाद अगर किचन के कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो रेगुलरली हमें चाहिए होते हैं, डब्बा, कढ़ाई, चिमटा, करछी, और उसके बाद आपको डाइनिंग टेबल पर सजाने के लिए, खाना रखने के लिए बहुत सारे कप प्लेट्स, हर तरह की चीज़, मतलब आप क्या चीज़ें, मैं क्या बोलूँ, क्या छोड़ूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पर इतना स्मूथ उन्होंने अरेंजमेंट्स किया हुआ है, लोग एक दूसरे पे धक्का मुक्की नहीं कर रहे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग आए, चाहे यंगस्टर्स आए, आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। उसके साथ में अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे मसाज, अगर जैसे किसी को बैक प्रॉब्लम्स हैं या किसी को नींद की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपको दवाई के, मतलब जैसे आपको कोई ऐसी दवाई नहीं चाहिए पर आपको नींद के लिए कोई टी चाहिए, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आपको बहुत सैंडल्स हैं जिससे आपका मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो सकता है, आपको एसेंशियल ऑयल्स हैं, आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो सारी भी चीज़ें हैं, ग्लासेस हैं, इतनी सारी चीज़ें ह्यूज क्वान्टिटी में, ह्यूज वराइटी में, हर तरह का स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है। बट एक बात बताऊँ आपको, 2:51 ऑलरेडी हो चुके हैं, सुबह 11 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए प्रणय जैन, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं सिंगिंग की, और उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाए, मतलब सारी ऑडियंस को और पूरे मॉरिशस को झुमा दिया। बट अभी वाले झुमाने वाला काम थोड़ा सा रुकने वाला है, कुछ 10 मिनट के अंदर ही। इस समय हमारे साथ यानी कि इवेंट्स वर्क्स और तनुश्री इवेंट्स ला रहे हैं मॉरिशस डांस आइडल सीजन 4, और यहाँ पर सेलिब्रिटीज सब आ चुके हैं, और स्पेशली धर्मेश सर आ चुके हैं, रचित आ चुके हैं, और कहते हैं ना कि बनने जा रहा है एक नया मॉरिशस का हीरो, जो कि अपने मूव्स के साथ, अपनी स्टाइल के साथ, अपने कलरफुल डिजाइनिंग के साथ में आने वाला है। कौन बनेगा कौन नहीं ये तो हम नहीं जानते, बट उस तरीके से सब प्लान्ड हो गया। अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद हम लोग सारे वहाँ पर उस तरफ गए हैं, सो यूनिक यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, और जो इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं या अभी भी स्टिल ड्राइव करते हुए आ रहे हैं, तो हम उन्हें कहेंगे जल्दी आ जाएं, अपना सीट लीजिए, इंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, और जो भी आपने प्लानिंग की है, पर घर में मत बैठिए, छुट्टी का टाइम है, छुट्टी को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको अभी भी आना है, रात को 9 बजे तक आप आ सकते हैं यहाँ पर, इंजॉयमेंट के साथ में अच्छा खाना है, फूड की ह्यूज वैरायटी है, और मैंने अभी छोले भटूरे खाए थे थोड़ी देर पहले, इतना टेस्टी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब कोई अलग टेस्ट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन टेस्ट है। और बहुत सारी वैरायटी खाने के साथ में, शॉपिंग की तरीका, और सबके पास जिस तरीके से बैग्स हैं, इसका मतलब उन्होंने
बहुत अच्छी शॉपिंग की है, तो मैं यही कहूँगी अंजनी सब इधर आए हैं, इन्जॉय कीजिए अपने प्रोग्राम्स को, सारे शोज़ को, और उसके साथ में अपने जो हमारे मॉरिशस का जो कहते हैं ना नया आने वाला फ्यूचर, वो जो अपना काफ कर रहा है, जो स्टाइल दिखाना चाहता है बॉलीवुड को, उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आना चाहिए आप सभी को। और

0: सकता है कि आपके घर में ही आने वाला कोई ऐसा पर्सन होगा जो आगे चल के कोई बॉलीवुड में जाए, चाहे एक्टर के रूप में, सिंगर के रूप में या डांसर के रूप में। तो हम यही कहेंगे, रेडियो मस्ती हमेशा 24 आवर्स आपके साथ है। इंजॉय कीजिए गानों के साथ में, और अभी इस टाइम आप आ जाइए SVICC जहाँ पे सभी पूरी MBC की टीम है और हम सारे आपके साथ है। इंजॉय कीजिए। थैंक यू हंसनी।
1: Thank you so much, Poonam, for all the details. That was very nice of you to share all the updates jo live ho raha hai at SVICC par. Special thank you to you and for our all technical team jo wahan par hai. Yahan par of course saath nibhate jayenge with the radio masti. So yahan par entertainment ka ye safar bas jari hum rakhte hai. It's a plug and play with Hansini up till 4 PM. Abhi kuch hi pal mein hum badhenge samacharon ki ora.
2: RM2
3: Radio Musty
2: Field

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good afternoon, a time check. It's 3 p.m. सुनते हैं समाचार करुणा जी के साथ. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे सादक के 46वें सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कल सोमवार को होगा और इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे. शिखर सम्मेलन से अलग डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अन्य राष्ट्र नेताओं से मुलाकात होगी, जिसके दौरान साझा हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी. नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल द्वारा आज रेजिडेंस वाली जी में एक नए चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया. बच्चों के लिए सीखने, खेलने, विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए एक नया स्थान. मौके पर उपस्थित डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के लिए इस क्लब का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे खुलकर अपनी बात रख सके, अपनी चिंताओं को साझा कर सके और अपनी आवाज बुलंद कर सके. मामी हवातुबांग मामले में कल एक और महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई होने जा रही है. अक्टूबर 2025 से मेलगोज स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मडागास्कर के कारोबारी मामी हवातुबांग को एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट में पेश किया जाएगा. वो जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि एफसीसी अब भी उनकी रिहाई का विरोध कर रहा है. इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही सुनवाई कल सोमवार को और मंगलवार को होगी. कल पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादीन और डॉक्टर प्रेम चमन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से इसकी पुष्टि हुई कि अविनाश रामगोती की मौत फांसी लगाने के कारण दम घुटने से हुई है. 43 वर्षीय अविनाश रामगोती कल सुबह मेलगोज जेल में अपनी कोठरी में मृत पाए गए थे. और विदेश में यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रात भर रूस की ओर से किए गए हमलों में कम 5 लोगों की मौत हुई है. दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है. यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस की 3 मिसाइलों और करीब 100 ड्रोन को मार गिराया. मॉस्को के मेयर के अनुसार रात भर करीब 600 यूक्रेनी ड्रोन शहर की ओर भेजे गए. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Railroad Clemencia Metiali Salki, 46 year old, Shri Chandra Dutt Perma, Shri Chandra Dutt Perma, jo सचिन से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थिकल दिन के 10 बजे इनके भाई मोहनलाल पेमा के मकान गुटवायाल क्लेमेंसिया से उठाकर दास

0: श्री विशाल भरत, श्री विशाल भरत जो विमल से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे इनके भाई गाजन भरत के मकान रॉकेट रोड खाउबे से उठाकर दाह संस्कार अंतिम संस्कार के लिए कापमालोगे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुमोरो एट 11:30 AM सावन रोड नोवेल फ्रांस में 88 साल के 88 ईयर ओल्ड श्री राम सुनकर सिंह रामदीन जो कि से जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर दाह संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM रॉयल रोड पेटी गाफ्रे में 65 साल की 65 ईयर ओल्ड श्रीमती अनुराधा मुरोतिया जो संगीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:15 बजे इनके भाई मनन मुरोतिया के मकान गुटवायार पेटी गाफ्रे से उठाकर दाह संस्कार के लिए डाहुची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:15 AM शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: RM2 Radio Musti

वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती। यहाँ पर जो गुड एनर्जी है, जो गुड वाइब्स है, उनको बस आगे बढ़ाएंगे एंड इवन इन द सेकंड आवर ऑफ प्लग एंड प्ले। वेलकमिंग यू ऑल। कैसे हैं हमारे फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आपका मूड एकदम बढ़िया है, और अगर मूड थोड़ा सा ऑफ है तो कोई बात नहीं, हम है ना आपका मूड ठीक करने के लिए। आज का दिन है पॉजिटिव वाइब्स और अच्छी मुस्कुराहट के नाम से सजाने वाले है। सारे जो टेंशन है थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और इस पल को एंजॉय करिए। दिस इज प्लग एंड प्ले अप टिल 4 PM। दीजिए हमारा साथ, हम सुनिए आपके साथ है। टू सेलिब्रेट योर डे, टू सेलिब्रेट दिस संडे, फैबुलस वीकेंड जो आपका और हमारा है, थैंक्स टू आवर रेडियो मस्ती।

RM2 Radio Masti. That was great, that was must, that was a super 90s, हमारे सब 90s के जाने वालों के लिए. और ये तो है जो होगा बस देखा जाएगा. आज जो खुलकर जिए यहाँ पर जाएंगे आपके साथ, कल की फिक्र में क्यों खोए ये पल जो मिला है ना आपके साथ, अपनों के साथ उसे मुस्कुरा कर अपना जाएगा यहाँ पर. ना कल की चिंता, ना आने वाले कल का डर, आज की खुशी है. सबसे खूबसूरत सफर जो हमको मिला है, मुश्किलें आएंगी तो हंसकर कहेंगे जो होगा देखा जाएगा. क्या पर कल का क्या होगा, किसने देखा है, आज का पल ही तो हमारा अपना है. फिक्र छोड़िए, मुस्कुरा लीजिए. यहाँ पर ये दिन हमारा है, ये वीकेंड हमारा है, अपनों का साथ है, अपनों का प्यार है. एंड वी आर हियर टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल टू सेलिब्रेट दिस वीकेंड. प्ले एंड प्ले लेकर आ रहे हैं द बेस्ट ऑफ म्यूजिक. रियली होप कि जो आज का हमारा कलेक्शन है ना, बस एंजॉय करते हुए बस आगे हम बढ़ेंगे. लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे हंसनी है जो आपके साथ है. वी आर हियर टू कीप शेयरिंग द गुड वाइब्स ऑल अराउंड. जहाँ पर भी रेडियो मस्ती की गूंज है वहाँ पर हम चले आएंगे टू वेलकम यू.

रोट ही यहाँ पर है, बस उनको मनाना है, रोट गई है, नाराज हो गई है, पता नहीं क्यों. ओके, तो उनका मनाने के लिए एक गाना डेडिकेट करेंगे आपके लिए, उनके लिए, ताकि जो प्यार है वो फिर से और रोमांटिक हो जाए, आप दोनों का प्यार बस खिल जाए. समानता का साथ है फ्रॉम रोजिल, और आपके लिए गाना फॉर माई लव जिसन के लिए, होम आई लव वेरी मच, आई वॉन्ट टू टेल हिम प्लीज बी बाय माई साइड एंड यू विल रिमेन माई स्पेशल फॉर एवर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव. गोविंद जी का साथ है फ्रॉम लाखोनस, एंजॉइंग द शो वेरी मच, और फैमिली के साथ एक अच्छा सा वक्त बिताते हुए यू वांट टू शेयर योर फीलिंग्स विद रेडियो मस्ती, एंजॉइंग फैमिली टाइम एट द सी साइड. तो एक गाना मेरे लिए हो जाए फॉर ऑल माय ग्रैंडचिल्ड्रन जो आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहे हैं, एकदम मस्ती ज़्यादा आप बन गए हो यहाँ पर, दादाजी और उनके बच्चे जो सब शामिल हो गए हैं, टू एंजॉय विद रेडियो मस्ती. यहाँ पर म्यूजिक फॉर एवरीवन, ट्यून इन फॉर द बेस्ट विद हंसनी फॉर प्लग एंड प्ले शो, जहाँ पर भी साथ जारी है. इट्स लाइक फन अनलिमिटेड मस्ती जो होती रहती है विद आवर रेडियो मस्ती.

लाख छुपी हमसे हम तुम्हें पहचान लेंगे तुम चाहे कितने भी खामोशी ओढ़ लेंगे हम तुम्हारी आंखों से दिल का हाल जान लेंगे तुम लाख छुपे दुनिया से मुझसे कहां छुप पाओगे दिल की बात होठों से नहा कहो आंखों से सब बता जाओगे ये जो गाना है खास तौर पे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर बाबू शोना एंड परी के लिए जो यहां पर स्ट्रांगली कनेक्टेड है इन दिस वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक ऑल द वे फ्रॉम कनाडा इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू इन मॉरिशस

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: आपके लिए था ये स्पेशल गाने. Really hope you enjoyed. बहुत ही खूबसूरत शो रहा आपके सभी लोगों के साथ. अभी इशारा है ठीक 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद द शो कंटिन्यूस ऑन रेडियो मस्ती विद ग्रेट गाने लेकर आएंगे बॉलीवुड टकटकाटक. आज आरजे संजय सुबह विद हिम. मुलाकात तो हमारी जल्द ही होगी दोबारा. तब तक के लिए स्टे सेफ. आई विश यू ऑल अ हैप्पी वीकेंड.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: शाम के चार बज रहे हैं. सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार.
6: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. कल से स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं. तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारियां तेजी पर होंगी. कुछ छात्रों विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा और ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में NC की परीक्षा देंगे. माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय पर चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख विषय रहा. भारतीय उच्चायोग ने कल शाम थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम भी उपस्थित थे. भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के उस नेतृत्व पर बल लिया जो आपसी विश्वास और समझ के उच्च स्तर का आनंद लेता है. उन्होंने शागस के समुद्री संरक्षित क्षेत्र के विकास और निगरानी से संबंधित नई रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ मॉरिशस के बंदरगाह के आधुनिकीकरण और

0: के बंदरगाह के आधुनिकीकरण और पुण्य राष्ट्र नेताओं से भी मुलाकात होने की भी संभावना है। इन बैठकों में साझा हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र के रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि हंगरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रही है। खबरों के अनुसार एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। उधर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पर पहुंचाया गया। 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 1,300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत बचाव के लिए 3,500 से ज्यादा सैन्य और पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: Music, Dr. Gatta.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: रविवार की शाम 4:10 सभी प्यारे लिसनर्स को संजय की वसे प्यार भरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार आप एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। जैसे कि हमारे दोस्त सभी ने कहा इन द न्यूज द लास्ट वीकेंड और वीकेंड का लास्ट डे यानी कि संडे की शाम है यानी कि और कुछ ही घंटों में छुट्टी के दिन समाप्त हो जाएंगे, छुट्टी का समय समाप्त हो जाएगा और फिर से बैक टू स्कूल। सो जाहिर है कि आज ऑन दिस संडे आफ्टरनून बहुत से लोग इस संडे शाम को एंजॉय कर रहे होंगे अदर साइड और इसीलिए हमने फिल्म कुछ कुछ होता है का वो गाना शामिल किया टू ब्रिंग बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ गुड टाइम्स स्पेंट विद योर फैमिली स्पेंट विद योर फ्रेंड्स एट द सीसाइड या तो जहां पर भी आप वाकई ऐसे नाइस मेमोरीज बनाएंगे। सो विशिंग यू अ वेरी नाइस लिसनिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो मस्ती संजय के साथ अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: आज की कड़ी धूप को देखकर लग नहीं रहा है दैट वी आर राइट इन द मिडिल ऑफ विंटर। अगस्त महीने की आज 16 तारीख है। But anyway, it's a good weather. It's a very fine Sunday afternoon. मौसम एकदम लाजवाब है। It's neither too hot nor too cold. और गाने आ रहे हैं आपके बेहतरीन। You're loving the songs on Radio Masti. इसे और इसको छोड़कर और क्या चाहिए। चले देखते हैं आपके मैसेज में क्या लिखा है। हेलो अंकल, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ छोटा शयान ओगु फ्रॉम ओमोगु पापुली मिसेस। प्लीज डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर मी एंड माय फैमिली एंड फॉर माय लास्ट वैकेशन, स्पेशली फॉर माय लवली एंड जो छोटी शाइना। हाउ क्यूट। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग श्याम देवी जैन जी के लिए। एंजॉइंग रेडियो मस्ती बाय द सी साइड टुमारो, बैक टू वर्क एट स्कूल।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: जी हेलो सुस 4:31 हुए हैं, आपको ले चलते हैं SVICC और वहां पर पूनम जी हमें बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है इन SVICC और इस आखिरी दिन में कौन कौन से प्रमोशन लगे हुए हैं। हेलो पूनम जी, नमस्कार।
3: हेलो जी, नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है, हम बस सोचते हैं कि अगर यहाँ पर नहीं होते और आपके यहाँ होते तो कितनी अच्छी बात होती।
3: मैं समझ सकती हूँ, यहाँ पर सबके एक्साइटमेंट ऐसे ही है संजय जी। यहाँ पर SVICC पाए में हम लोग पूरी MBC की टीम यहाँ पर है और यहाँ पर इस समय जहाँ उत्सव इंडिया शॉपिंग मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल चल रहा है और आखिरी दिन के चरम पर है और 16th हमने सभी को बताया था कि लास्ट डे है और जो कि पावर्ड बाय SBI ML और LIC। और स्टूडियो में मेरे साथ जो हैं संजय जी, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि संजय जी आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आप पहले आए थे या नहीं आए थे, बट यहाँ पर ना 3 टीम्स बन गई हैं। एक टीम तो ये है कि मतलब जो कि सिर्फ खाने की तरफ टूट पड़ी है, उनको पता है कि बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, बहुत ही अच्छी सर्विंग है और क्लासिक फूड है, चाहे मॉरिशन फूड हो, चाहे इंडियन फूड हो, चाहे हर तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के काउंटर्स लगे हैं। और एक जो मैं आपको बताऊँ ना कि बहुत ही अच्छा एक और चीज़ हो गई है कि यहाँ पर जो लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं वो लोग सीधा अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, वो ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि थैलों में डालो, बैग्स लेकर खोलो, उसके अंदर जो जो सामान मिलता जा रहा है फटाफट डालो। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें और देखी है कि यहाँ पर ना होलसेल भी शुरू हो गया है, लोग यहाँ से ले लेके अपने मतलब छोटी छोटी शॉप्स के अंदर रखने वाले हैं और ये भी चल रहा है। और बहुत सारे कहते हैं यहाँ पर जो किचन आइटम्स लगे हुए थे, पर्सेस लगे हुए हैं और यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स, सोफा कवर्स, अलग तरह की मतलब अलग क्वालिटी की जो हमें नॉर्मली नहीं मिल पाती है कॉटन वो मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत तरह की लाइट्स हैं, चाहे फैंस कह लो, गर्मियाँ आएंगी तब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है जो कि इस समय बड़ी फुल मस्ती के बाहर इतना हल्ला गुल्ला तालियों का जो बौछार हो रही है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो तीसरी पार्टी है वो देखना चाहता है धर्मेश सर को। और जो धर्मेश सर हैं मॉरिशस डांस आइडल सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में आज ज्यूरी हैं और आज जज की सीट मिली है उन्हें। और कहते हैं ना कि जब सीट मिलती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। उससे पहले अभी अनुपम जैन जी ने सभी परिवार के साथ सभी को धन्यवाद दिया और धर्मेश सर को राजस्थानी स्टाइल की पगड़ी पहनाई और सभी को बताया कि 70,000 पीपल ये 5 दिन में लोग आए हैं। मतलब 70,000 एक स्मॉल अमाउंट नहीं है, बहुत दुनिया इधर आई है, सब लोगों ने शॉपिंग की है। मतलब एक शॉप खाली होने लगती है ऊपर से दूसरा सामान आ जाता है। और यहाँ पर इस समय जो धर्मेश सर के साथ में श्रिया, आदेश, गौरव, आदित्य, हंस ये हॉट सीट पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको आज बहुत बड़ी ड्यूटी निभानी है। और

0: सिंगर्स अगर आप बात करें ना, संजय जी तो निशी और कुणाल और शशि भी हैं जो कि इस माहौल को और गर्म बनाए बैठे हैं अपनी बातों के साथ, अपनी बहुत सारी मस्ती के साथ में। तो मैं बताऊं, यहाँ पर आओ, खाओ, मस्ती करो, भविष्य देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको छोटी छोटी जिस चीज़ों के ऊपर हमारा रिचुअल होता है और उस पर ध्यान रहता है, वो भी सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी 9 बजे तक हैं हम यहाँ पर हैं और 9 बजे तक यहाँ पर फुल मस्ती है। यहाँ पर खचाखच सब तरह से लोग भर चुके हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है जो आ रहे हैं वो साथ साथ जा भी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो मतलब जो आता है वो थोड़ा देर के बाद चला जाता है, तो इसलिए बहुत स्मूथ शॉपिंग हो रही है संजय जी। और यहाँ पर स्टूडियो के अंदर आप यहाँ बैठे हैं, सच में यहाँ का माहौल आपको मैं बता नहीं सकती, इतना इम्प्रेसिव है, इतना हर तरफ लाइट्स है, हर तरफ खुशी का माहौल है और सभी के चेहरों पर स्माइल है। तो सब कुछ आराम से हो रहा है, हम तो यही बोलेंगे जो घर पे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आ जाइए, एंजॉय कीजिए खाने के साथ में, पार्टी के साथ में, मस्ती के साथ में, और उसके बाद रेडियो मस्ती तो है ही जो आपको 24 आवर्स आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि भाई कहीं नहीं जाना, आज कोई प्लान नहीं है, तो यहाँ पर आ जाइए SBICC पाए में। मैं तो इतना ही कहूँगी संजय जी, बाकी हमने मुझे अब मुझे शॉपिंग करनी है, और बताओ
1: आप भी शॉपिंग कीजिए, दिल खोल कर शॉपिंग कीजिए।
0: यस, बस मुझे पैसे देखने हैं कितने हैं।
1: थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं।
0: यस श्योर, थैंक यू सो मच, बाय बाय
1: बाय।
2: म्यूजिक टक टक टक RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: मेरी जिंदगी है तू, आखिर हमारी जिंदगी होती ही क्या। कामकाज तो रोज होता रहता है, भागदौड़ तो होती रहती है, लेकिन जो समय, जो क्वालिटी टाइम हम अपनों के साथ बिताते हैं वो हमेशा के लिए यादगार बन के रह जाते हैं। यही जिंदगी होती है। हम रोजी कमाई में लगे रहने के कारण कभी भूल जाते हैं कि जिंदगी क्या होती है। थैंक यू फॉर एंजॉयिंग दिस म्यूजिकल राइड विद योर डियर्स एंड नियर्स एंड नेक्स्ट ऑन गोइंग हमारे दोस्त प्रीतम बीतू जी के लिए, जो बीतों से हमारा साथ निभा रहे हैं। उनकी ओर से फॉर वाइफ वर्षा बोथ एंजॉयिंग द शो। हाय रेडियो मस्ती मैसेज है गीता सीताबल राम जी की ओर से फ्रॉम शातु बेनारस, विशिंग ए वेरी हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू बेबी Chianshi Sital or Rodriguez from Dagen Shweta Ravish Pesha and Lavesha and the whole Apadu family of Roshnoa. Sati Sat next Gana Jata hai Bharadwaj ji ke liye jise mein humare saath jure hue hain. Unki or se next song going for the whole BDC family of Tayak and also going for Lalita Jitan ji. Back to work at school tomorrow. Good luck to all students and teachers. Unki or se.

0: नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टक टक टक संजय के साथ
1: म्यूजिक टक टक टक
2: आरएम2 रेडियो मस्ती

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: 5:18 रेडियो मस्ती के लहरों पर म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ। माला जी ने एक बहुत ही प्यारा सा संदेश भेजा है टू ऑल शिव भक्तास जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशिंग देम ऑल द वेरी शुभ संदेश श्रवण मास के अवसर पर। शुभ श्रवण मास वो लिखती हैं टू ऑल शिव डिवोटीज। ये है माला जी फ्रॉम कटरबोन जो लिख रही हैं। साथ ही साथ लेते हैं ये अगला मैसेज नंदिनी जी की ओर से, लिखते हैं संजी प्रणाम, नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मी प्लीज। नाश्रीन जी हमारे साथ निभा रही हैं फ्रॉम पोर्ट्रीज, देखती हैं शी सेंट अ ब्यूटीफुल कोट ऑन रूमी व्हिच रीड्स लाइक स्टॉप सर्चिंग हियर एंड देयर द ज्वेल्स आर इनसाइड यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सॉन्ग आल्सो गोइंग जाना जी की ओर से फॉर द होल शिव सरन फैमिली ऑफ लक। एंड दिस लास्ट मैसेज गोइंग फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति, ग्रैंडसन अरविक एंड आर्क फैमिली ऑफ मॉडल बे।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यकीनन हम सब एक डोर से बांधे हुए हैं, इसीलिए हर संडे की शाम आप घींचे चले आते हैं रेडियो मस्ती पर टू स्पेंड सम वेरी नाइस मोमेंट्स विद योर फैमिलीज विद योर फ्रेंड्स एंड इवन जब आप काम पर होते हैं बिकॉज यू आर श्योर यू आर गोइंग टू फाइंड गुड म्यूजिक एंड हिट सॉन्ग्स हियर ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। यहाँ पर देव कुमार जी हमारा साथ निभा रहे हैं, लिखते हैं वुड लाइक टू डेडिकेट नेक्स्ट सॉन्ग फॉर गंगू फैमिली ऑफ न्यू गोव, वाइफ वर्षा, मॉम सुनीता, सिस्टर दीपिका, दीपा, भाई बूम एंड दिनेश एंड डॉक्टर एंड डैड मिस्टर राम। यस डैड मिस्टर राम मैसेज है देव कुमार जी की ओर से, थैंक यू देव कुमार साहब। Okay, कैसे हो आप संजीव, प्लीज प्ले नेक्स्ट सॉन्ग फॉर ऑल शिव भक्तास एंड फॉर माय जान आल्सो फॉर यू और M2 RJ's, आई नो आई ही नोज आई लव हिम अ लॉट मैसेज है आशा जी की ओर से। यही गाना चाहते हैं ज्योति जी के लिए फ्रॉम शतु बेनास, उनकी ओर से फॉर रेखा सुरेखा एंड माय फैमिली। Good evening, Sanji. Next, I'm going for Vedu Papa. Papa wishing her happy birthday with niece Angel tomorrow. यानि कि जन्मदिन कल है. It's never too late and never too early to wish someone very happy birthday. आशीर्वाद. Message है कमल दाप, कमलदीप साहब की ओर से.

0: into Radio Musti.
1: इसे नसीब कहें या कुछ भी कहें, लेकिन प्यार भी कह सकते हैं, दोस्ती भी कह सकते हैं, वफादारी भी कह सकते हैं, give it any name, लेकिन बात ये है कि ये विधाता के क्या खेल है कि हम हर संडे की शाम को आपसे मिलने आते हैं on the frequencies of Radio Musti, कुछ अच्छा समय बिताते हैं, just to set the moon right for the next week, जो कल ही शुरू होगा, और कल तो काफी special है, because it will be the first day of the third term, चंद बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण term होने वाला है, so I request you honestly to put all your effort in this third term, क्योंकि जो discipline आप अभी दिखाएंगे, आप अपनी जवानी में उसका रंग, उसका नतीजा आप जब बड़े हो जाएंगे, then you'll see how important it was to be disciplined at this stage of your life. Thank you for listening to Radio Musti and for all the effort you put in your studies. And thank you also all the teachers जो बहुत ही लगन के साथ लोगों को पढ़ाते हैं और इस भविष्य का, इस देश के भविष्य का निर्माण करते हैं. छह बजे आप सुनेंगे समाचार, और समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी.

0: रविवार 16 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका का डर्बन शहर सोमवार से सैडेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से है तैयार। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस रविवार दोपहर को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, जहां खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे प्रमुख विषयों पर रहेगा ध्यान केंद्रित। कल से स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं। तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारी तेजी पर होगी। कुछ छात्रों, खासकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा। ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। मामी गावातोमांगा मामले में कल से एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मेडागास्कर के ये व्यापारी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। और विदेश में इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 51 लोगों की मौत हो गई है और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि 36 लोग गंभीर रूप से हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देती है विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल से शुरू हो रहे सैडेक के 46वें राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस रविवार दोपहर को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पर पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को एक नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से सैडेक के सभी 16 सदस्य देशों के नेता यहां एकत्र हुए हैं। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर ज्यादा विस्तार करुणा लालू के साथ।
1: डर्बन के किंगशाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का आधिकारिक और प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग की उपमंत्री ठंडी मोराका भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान राष्ट्र नेताओं के लिए निर्धारित औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। सैडेक का 46वां शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, सोमवार को आधिकारिक रूप से शुरू होगा। क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय एकीकरण में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र में बदलाव तथा महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ कई मुलाकातें भी होंगी। इन बैठकों में दक्षिण अफ्रीका के सामने मौजूद साझा चुनौतियों के साथ साथ सैडेक के भीतर मॉरिशस की प्राथमिकताओं को भी सामने रखने का अवसर मिलेगा। इस बीच आज रविवार रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा डर्बन ICC में आयोजित राजकीय भोज में शामिल होंगे। ये राजकीय भोज मॉरिशस के समयानुसार रात 9 बजे आयोजित किया जाएगा और इसमें सैडेक के सभी 16 सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे।
0: भारतीय उच्चायोग ने कल शाम थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम भी उपस्थित थे। भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के उस नेतृत्व पर बल दिया जो आपसी विश्वास और समझ के उच्च स्तर का आनंद लेता है। उन्होंने शागस के समुद्री संरक्षित क्षेत्र के विकास और निगरानी से

0: संबंधित नई रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ मॉरिशस के बंदरगाह के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के महत्व को भी रेखांकित किया है। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का।
1: May I invite you to join me in a toast to the good health of Her Excellency, the President of India, and to the prosperity and happiness of the people of India.
2: इस

0: to the continued progress and prosperity of the wonderful people of Mauritius and to the enduring friendship and special ties between India and Mauritius.
1: अपने संदेश में उन्होंने चलाई जा रही सहयोग की विभिन्न पहलों का उल्लेख किया, जिसमें शागोस मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया के विकास और संचालन से जुड़ी हाल ही में स्थापित रणनीतिक साझेदारी शामिल है। उन्होंने कहा, तटीय सर्विलेंस, ईजेड की मॉनिटरिंग, हाइड्रोग्राफी और समुद्री सुरक्षा जागरूकता को लेकर द्विपक्षीय सहयोग इस साल ज्यादा गहरा हुआ है, लेकिन ये साझेदारी जहाजों और क्षमताओं से कहीं आगे बढ़ के है। ये विकास नए सहयोग आयामों में दिखाई देता है, जो शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के संचालन और उसकी निगरानी के लिए स्थापित हुआ है, और साथ ही मॉरिशस के बंदरगाह की विकास परियोजना भी इसका हिस्सा है। ये पहल एक ज्यादा सुरक्षित और कामयाब हिंद महासागरीय इलाके का हमारा विजन दर्शाती है। समारोह के अंतर्गत पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां हुई, जिससे उपस्थित मेहमानों को भारत की समृद्ध विरासत की झांकी मिली।

0: एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें दशकों से भारत और मॉरिशस के बीच की खास साझेदारी प्रस्तुत की गई। ये माध्यम रहा दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के संबंधों की समृद्धि और निरंतरता उजागर करने का।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मामी खावतो मांगा मामले में कल से एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मेडागास्कर के ये व्यापारी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे अपनी जमानत याचिका दायर कर रहे हैं जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन उनकी जमानत का विरोध कर रहा है। कल और मंगलवार को होने वाली ये बहस इस मामले में निर्णायक मानी जा रही है। आइए इस मामले के मुख्य न्यायिक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। कविन तापिसाओ की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
2: मामी गावातुमांग अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। 56 वर्षीय इस मेडागास्कर के कारोबारी को 24 अक्टूबर को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने गिरफ्तार किया था। उस समय वो फिनिक्स स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती थे। उन पर फिलहाल 3 अस्थायी आरोप हैं, मनी लॉन्डरिंग के 2 और आपराधिक साजिश का 1 आरोप। ये मामला एफसीसी की उस जांच से जुड़ा है जिसमें मेडागास्कर और मॉरिशस के बीच 7.3 बिलियन रुपये के वित्तीय लेन देन की भी जाँच की जा रही है। उनकी संपत्तियों और उनके कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी कई कंपनियों की संपत्तियों पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को मामी गावातुमांग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध वकील को मॉरिशस बुलाया। मॉरिशन वकीलों के साथ एक्टो बेनोडिनी ने एफसीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मामी गावातुमांग की जमानत के संबंध में पहली सुनवाई 30 दिसंबर 2025 को हुई, तब बेल एंड रिमांड कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुख्य रूप से फरार होने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने के खतरे को ध्यान में रखा। 30 जुलाई को मामी गावातुमांग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेल एंड रिमांड कोर्ट में पेशी दी। एफसीसी ने नई याचिका की स्वीकार्यता को लेकर अपनी प्रारंभिक आपत्ति वापस ले ली। इसके बाद अदालत के लिए अब उनकी जमानत याचिका पर गहराई से जांच करने का रास्ता साफ हो गया है।
1: गुरुजी द्वारा अपनी पुस्तक स्वर्ण चैतन्य मराठी भजन संग्रह के माध्यम से 40 वर्षों की भक्ति और साधना का प्रसार किया गया है जो मराठी भाषा में 750 भजनों का एक संकलन है। इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन इस रविवार को मोका स्थित महाराष्ट्र भवन में मंत्री महेंद्र कुंडिया

0: के और कई अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन द्वारा मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, मराठी स्पीकिंग यूनियन और फ्लक मराठी विघ्नेश्वर मंडली के सहयोग से किया गया था। शहजाद अली जुमन, अदिति अवतार।
1: भजन यानी ईश्वर की भक्ति में गाए जाने वाले गीत भक्तों का प्रेम और श्रद्धा दर्शाते हैं। इनकी जड़ें भक्ति में हैं, जो गीतों के माध्यम से श्रद्धालुओं को एक दूसरे से भी जोड़ती हैं। इस रविवार गुरुजी प्रेमदेव ईतू सावंत के लिए एक भावुक पल रहा, जब उन्होंने अपनी पुस्तक स्वर्ण चैतन्य मराठी भजन संग्रह की लॉन्चिंग की, जिसमें मराठी भाषा के 750 भजनों का संकलन है। मराठी के पूर्व शिक्षक रहे गुरुजी के लिए ये किताब 40 से ज्यादा सालों तक भजन लिखने की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने अपने गुरु की सलाह पर ये संग्रह तैयार किया ताकि इस विरासत को सभी तक पहुंचाया जा सके। गुरुजी कहते हैं, मैं बहुत कम उम्र से लिखता और गाता हूँ। 2007 में मेरे स्वर्गीय आध्यात्मिक गुरु ने मुझे ये संग्रह बनाकर उसे एक पुस्तक का रूप देने को कहा। आज उनका सपना साकार हुआ है। इस पुस्तक में दुर्गा माँ, गणेश भगवान आदि सभी की भक्ति के भजन पाए जाते हैं। इस संग्रह में भजनों को रोमन लिपि में भी लिखा गया है। गुरुजी प्रेमदेव ईतू सावंत हिंदी भजनों का भी संग्रह तैयार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके जो उनके दिल के बहुत करीब है।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। सीखने, खेलने, गतिविधियों में भाग लेने और विशेष रूप से बच्चों की आवाज बुलंद करने की दिशा में एक नया स्थान, जी हाँ, नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने इस रविवार को रेजिडेंस वालेजी में एक नए चिल्ड्रंस क्लब का आयोजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री और महिला अधिकार, जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री आरिया नवामारी, नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल के अध्यक्ष जिल्बे लुइज और गणराज्य चीन के दूतावास व शुगर इंडस्ट्री वेलफेयर फंड के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह के दौरान बच्चों को खेल उपकरण भी भेंट किए गए। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल से स्कूल फिर से शुरू हो रही है, तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिविजन और परीक्षाओं की तैयारियाँ तेजी पर होंगी। कुछ छात्र विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा और ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय में चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख रूप से एक विषय रहा। हमारे यहाँ 2 सप्ताह बिताने के बाद जैकी नाम का समुद्री हाथी यानी कि एलिफेंट सील वापस समुद्र पर लौट गया लगता है। बुधवार के बाद से उसे फिर से नहीं देखा गया है, लेकिन उसने मॉरिशस वासियों के दिलों में अपनी बेहद खूबसूरत यादें छोड़ी हैं। वे कभी कभी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वेल, शार्क, कछुए, सील या फिर समुद्री पक्षी, लेकिन उनके ये रास्ते मानवीय गतिविधियों से बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में 400 शोधकर्ताओं के शोध शामिल हैं, जिसमें मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का शोध भी शामिल है। ये अध्ययन आज उनकी आवाजाही और प्रवास का एक अभूतपूर्व नक्शा यानी कि मैपिंग प्रस्तुत करता है, जिसका एक कड़ा निष्कर्ष महासागरों के केवल 30% हिस्से को संरक्षित करना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत देश का लोकतंत्र के बारे में। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि ये शब्द आज भी भारतीय राजनीति में उनकी सोच, देश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद दिलाते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकिशन कृष्णन, राज्यसभा के उप सभापति और अन्य नेताओं ने सदैव अटल समृद्धि स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: उस महान हस्ती को नमन जिन्होंने भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए अहम और ऐतिहासिक निर्णय लिए। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर उनकी बरसी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे महानुभाव जिन्होंने भारत की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सह संस्थापकों में शामिल थे। वे 9 बार लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचित हुए थे, यानी 50 से अधिक वर्षों तक वे सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी वे प्रथम राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कांग्रेस के सदस्य न होकर भी प्रधानमंत्री का पद संभाला था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल भारत के विकास और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1998 में उनके तहत भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत की प्रतिरक्षा क्षमता और मजबूत हुई। वाजपेयी जी ने देश के आर्थिक विकास, सड़क निर्माण और बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया। अटल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान कवि भी थे।
3: जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए।
2: उनकी कविताओं में देशभक्ति, संघर्ष, आशा और जीवन के प्रति गहरी सोच देखने को मिलती है। भाषण देने की उनकी शैली बहुत प्रभावशाली थी। वे कठिन बातों को भी सरल और मुवस्सिर तरीके से व्यक्त करते थे। 1977 में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 32वीं महासभा को हिंदी भाषा में संबोधित किया था और वसुधैव कुटुंबकम पर जोर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते थे। वे विपक्ष के विचारों का भी सम्मान करते थे। इसी वजह से अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे। उनकी विनम्रता, अच्छा व्यवहार और राजनीतिक सोच ने उन्हें एक अलग पहचान दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके देश के प्रति योगदान के लिए सम्मान मिले। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में देश की सेवा, लोकतंत्र, साहित्य और राष्ट्र विकास को महत्व दिया। उनके विचार, कविताएं और देश के लिए किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। वे भारत के इतिहास में एक महान और सम्मानित नेता के रूप में सदैव याद रहेंगे।
0: और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है कि कल से स्कूल फिर से शुरू हो रही है, तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारियां तेजी पर होंगी। कुछ छात्र, विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा। ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय में चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख विषय रहा। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
4: माध्यमिक स्कूलों के स्तर पर तीसरा टर्म समय के साथ एक असली दौड़ जैसा होता है, जिसमें फाइनल रिवीजन और अंतिम परीक्षाएं होती हैं। इस साल कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं। ग्रेड 9 के नेशनल सर्टिफिकेट एजुकेशन की परीक्षाएं सितंबर महीने के बजाय अक्टूबर में लगेंगी। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद कहते हैं, स्कूली कैलेंडर में परीक्षाएं आगे बढ़ाकर हम छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने और शिक्षकों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका दे रहे हैं। माध्यमिक के शिक्षक इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि हर स्कूल के हालात अलग अलग होते हैं। यूनाइटेड डेप्यूटी रेक्टर्स एंड रेक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष विकास रामधनी कहते हैं कुछ छात्रों के साथ ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है जबकि उच्च परफॉर्मेंस वालों के साथ अलग तरीके का काम होता है। इसके अलावा तीसरे टर्म में रिमीडियल क्लासेस भी होते हैं, ये सब इस अवधि के दौरान ही किया जाता है। इस सोमवार से स्कूलों में नया टर्म शुरू होने के साथ नए नियमों पर चर्चा तेज की जा रही है। छात्रों को स्कूल में पहुंचते ही अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखना होगा, साथ ही बुलिंग की समस्या के खिलाफ संघर्ष की दिशा में शिक्षकों के लिए जरूरी प्रशिक्षण शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं हम देख रहे हैं कि ड्रग्स और बुलिंग के खिलाफ स्कूली कर्मचारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे इनका सामना कर सकें। साथ ही माध्यमिक स्कूलों में ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सहयोग की मांग की गई है जिसमें रोकथाम और छात्रों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा।
0: सीखने खेलने गतिविधियों में भाग लेने और विशेष रूप से बच्चों की आवाज बुलंद करने के लिए एक नया स्थान नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने इस रविवार को रेजिडेंस वालीजी में एक नए चिल्ड्रन क्लब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री आरियान नवामारी, नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल के अध्यक्ष जिल्बे अल्वीज और गणराज्य चीन के दूतावास व शुगर इंडस्ट्री वेलफेयर फंड के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। संतना पौसिनो की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू का।
5: रेजिडेंस वालीजी में बच्चों के लिए एक नया स्थान जहां वे एक दूसरे से मिल सकेंगे, सीख सकेंगे और अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर सकेंगे। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने रविवार को यहाँ एक नई चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया। 7 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित इस क्लब में खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां की जाएंगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आरियान नवामारी ने कहा नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल के कई क्लब हैं देश भर में। आज कई बुराइयां हैं जिनसे बच्चों को खतरा है। क्लब में बच्चों को संगठित कर उनकी आवाज पर ध्यान देते हैं और उनके लिए मनोरंजन और खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस वास्ते चीनी दूतावास का भी समर्थन मिला है जिसने क्लब के लिए खेल उपकरण प्रदान किए। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल के साथ काम करने में प्रसन्नता हो रही है। बच्चों को यादगार पल देना चाहते हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान बच्चों ने कई गतिविधियों में भाग लिया जिसमें फुटबॉल टूर्नामेंट भी शामिल रहा। अंततः बुजेकासी की टीम विजेता बनी जिससे उसके युवा खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत गर्व है, खेले गए पहले ही मैच में हमारी जीत हुई। 10 साल से काशी जूनियर क्लब में खेलता हूँ, अपने कोच को धन्यवाद है। चिल्ड्रंस क्लब की ये सिर्फ शुरुआत है। उद्देश्य रेजिडेंस वालीजी के युवाओं के लिए मुलाकात, विचारों के आदान प्रदान और सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनना है।
0: और विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 51 लोगों की मौत हो गई है, करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जबकि 1,300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत बचाव के लिए 3,500 से ज्यादा सैन्य और पुलिस कर्मी तैनात किए गए। उधर हंगरी में एक दर्दनाक सड़क का हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई जिससे ये हादसा हुआ। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूसी रॉकेट सेंटर को निशाना बनाया है, साथ ही रूस की एक सैन्य हवाई पट्टी पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए हैं, जिनमें से 600 का रुख राजधानी मॉस्को की तरफ था। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

0: अंत में मौसम का हाल।
1: पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात के दौरान और कल सुबह भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। ऊंचाइयों में कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे। कल दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, साथ में दक्षिण पश्चिमी लगूनों में भी। सूर्यास्त 5:57 पर, कल सूर्योदय सुबह 6:30।

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आयुषोक समाचार सुनते हैं रारोद एक्वायो में जो लियो जिम के पास हैं 47 साल के 47 years old के श्री विशाल राजकुमार जिन्हें सब लोग सचिन मासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रारोद एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रारोद क्लेमोसिया में 46 साल के 46 years old के श्री चंद्रदत्त पेमा जिन्हें सब लोग सचिन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके भाई श्री मोहनलाल पर्मा के घर रारोद क्लेमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लेमोसिया की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रारोद पेचिराफ्रे में 65 साल की 65 years old की श्रीमती अनुराधा मुरुतिया जिन्हें सब लोग संगीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के सवा दस बजे उनके भाई श्री मानन मुरुतिया के घर रारोद पेचिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो मॉर्निंग एट 10:15। थ्रेबोन नंबर तीन वाकवा में 82 साल की 82 years old की श्रीमती नीराबाई गोपाल पैदाइशी नाम सकाराम और जिन्हें सब लोग नीराबाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर थ्रेबोन नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। ऋषि दयानंद स्ट्रेट मौचिनिया सुरीनाम में 79 साल की 79 years old के श्री खुशीराम जादू जिन्हें सब लोग दुलम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विकास जादू के घर ऋषि दयानंद स्ट्रीट मौचिनिया सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रारोद कैथोकोको में 65 साल की 65 years old के श्री गुरुदेव राम नारायण जिन्हें सब लोग चनन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे

0: थे, उनकी पत्नी श्रीमती इंद्रावती रामनारायण के घर रुद्र कैथोकों को से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कालीमाई रोड कॉन दे पेशेया ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में, कालीमाई रोड कॉन दे पेशेया ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 69 years old की श्री हरि प्रसाद जंगली, श्री हरि प्रसाद जंगली जिन्हें सब लोग राजा और राज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर कालीमाई रोड कौंदपेशिया ग्रैंड रिवर साउटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिफ्रया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। पेचित रिवियर में 65 साल के 65 years old के श्री मुन्येंद्रनाथ सिंह सोहन जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे ला शापेल ऑन दे मुरा पेचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगांव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 88 साल के श्री रामशंकर सिंह रामदीन जिन्हें सब लोग जोके के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर सवन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रैकेट रोड ग्रांड बे में 46 years old के श्री विशाल भगत जिन्हें सब लोग विमल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके भाई श्री गैसों भगत के घर रैकेट रोड ग्रांड बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमालेगे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11:30 AM। रॉयल रोड मिलरोज में 62 साल के 62 years old के श्री राजकुमार सोमारू जिन्हें सब लोग विनोद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री हशील सोमारो के घर रॉयल रोड मेलरो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। और एडीसी बेलोम में 57 साल के 57 years old के श्री संताराम सबाजी जिन्हें सब लोग गांसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी ताबूत कल दिन के डेढ़ बजे उनके भाई श्री रविन सबाजी के घर एडीसी बेलोम से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए बेजिकाप स्थित सैं फ्रांसवा दाजीज का गिरजाघर ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए सैमौते बेलोम का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुमारो एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Music, Tuck Tuck Tuck. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 6:37 मिनट सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाटक।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अभी भाई जो दोस्त जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम अक्रॉस द आइलैंड एंड आल्सो फ्रॉम अब्रॉड, यरेश समझे हमारे दोस्त यरेश जी फ्रॉम सुरीनाम जो 24 घंटे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपको हमारा सलाम यरेश जी। ऑल्सो दिस वन गोइंग सुया जी की ओर से फ्रॉम कोंगोमा लिखते हैं नमस्ते RM2, वेरी स्पेशल डे फॉर पल्लवी जो पिचित रिवियर रहती हैं और आज जिनका जिनकी मंगनी हुई। सो बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मौसा विकी मौसी कीर्ति अवनी एंड लवली वंश। बबीता जी अपो कुलवीर आपको भी हमारा सलाम एंड दिस मैसेज। हाय संजी मैं हूँ वीना, वीना आपकी सिलेक्शन एकदम लाजवाब है, दिल को छू जाता है, लवली गाने फॉर यू वीना जी एंड फॉर ऑल दोस लिसनिंग अप देयर। आपकी फैमिली से दिस नेक्स्ट वन

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: जी। और दोस्तों और कुछ मिनटों में रात के 7 बज जाएंगे और हमारे बगल में हमारे दोस्त निखिल भी आ चुके हैं टू कीप यू कंपनी ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी नाइस वीक अहेड एंड बन रेंट्री जैसे कहते हैं फॉर ऑल दोस टेकिंग द रोड टू स्कूल्स टुमारो। टेक केयर, लव यू एंड लिविंग यू विद दिस वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक रिमाइंडिंग अस ऑफ दोस ब्यूटीफुल मेलोडीज ऑफ द अर्ली मिलेनियल पीरियड। टेक केयर, लव यू एंड कीप स्प्रेडिंग the music of love around you.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: गुड इवनिंग मॉरिशस. अगस्त का संडे है और वीकेंड का आखिरी चैप्टर शुरू हो चुका है. कल से फिर वही स्कूल के बेल्स, यूनिफॉर्म, अलार्म क्लॉक्स, होमवर्क और वो मंडे मॉर्निंग वाला रश. लेकिन आज रात, आज की रात, नो स्ट्रेस. आज रात सिर्फ म्यूजिक और मेमोरीज बॉलीवुड के साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं बॉलीवुड सिज़ला. मैं हूं निखिल. वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए. आप चाय पीते हो या कॉफी पीते हो या कुछ भी नहीं पीते हो, लेकिन फिर भी संडे को एक खूबसूरत म्यूजिकल गुड बाय तो बनता है. तो साथ में चलते हैं. शाम से रात का सफर हम साथ में तय करते हैं. हमारी खासियत यह है कि आपको खास हम महसूस कराएंगे. जरूर आपके मैसेजेस भी भरपूर आएंगे, ये हमें यकीन है. 5499-1294 फॉर एनी डेडिकेशंस, एनी स्पेशल मैसेजेस दैट यू वांट टू लीव फॉर द किड्स, या फिर खुद के लिए, खुद को खुश करने के लिए कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम 5499-1294 पर रहेगा आपका इंतजार.

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, संडे नाइट है, कल स्कूल है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज रात बॉलीवुड सिज़ला का नाइट है। जी हाँ, स्कूल की बात करते ही हमको एक मैसेज मिला। सो दिस इज फ्रॉम शिक्षा जी, जो खुद एक शिक्षिका हैं। वो कहना चाहती हैं सभी शिक्षकों एवं छात्रों को स्कूल के अंतिम सत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़िए, परीक्षा के लिए अच्छी तरह तैयारियां कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि परीक्षा के लिए क्यों, कल के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं वो आप हमें बता सकते हो। यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शायद पिछले सत्र का होमवर्क रह गया हो। साथ ही साथ एक गाना चला देते हैं खास आपके लिए। तब तक आप हमको बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सी तैयारी हो रही है। फ्रॉम द मूवी पाठशाला, ए खुदा, इन द लवली वॉइस ऑफ सलीम मर्चेंट, स्पेशली फॉर ऑल दोज हु आर जॉइनिंग स्कूल बैक टुमारो।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, दिल की हम कभी नहीं सुनते ना. दुनिया की सुनते रहते हैं, दुनिया की करते रहते हैं, लेकिन

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जब आपने रेडियो अभी अभी ऑन किया है तो आपको बता दें दैट दिस इज बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन RM2. मैं हूं निखिल और साथ दूंगा आपका अप टू 9 PM. तो बातें भी

जैसे कि अभी के लिए करते हैं थोड़ी सी म्यूजिक की बात है. मुझे लगता है कि म्यूजिक जो है वो एंटरटेनमेंट बस एंटरटेनमेंट नहीं होता, इट्स पार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव मेमोरी. जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पास उनके सॉन्ग्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के उनके क्लासिक्स, मेरे जेनरेशन के अपने अपने क्लासिक्स होते हैं, और ये जो नया जेनरेशन आ रहा है उनके पास अपने क्लासिक्स. लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सब जेनरेशन साथ मिलकर सुन सकते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, साथ में गाते भी हैं. ये कुछ अगला गाना जो है वो कुछ ऐसा ही है. ये रिक्वेस्ट हमें मिला है फ्रॉम सुगिनाम, फ्रॉम बाय यले श्याम, आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, और साथ ही साथ जिनको भी एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी है. द मून इज ब्यूटिफुल टुनाइट, मून इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टुनाइट, खासकर उस चांद के लिए. ये मेरा चांद मुझे आया है नजर.

कुछ होते हैं ऐसे क्लासिक्स जैसे हमने अभी अभी सुना, और कुछ होते हैं ऐसे क्लासिक्स जो जिनको रीमेक करके और भी अच्छा बनाया जाता है, मॉडर्न जमाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा ही कुछ अभी सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आवारापन 2।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: अभी अभी यही तो बात कर रहे थे कि संगीत इतनी इतनी खूबसूरत बात है संगीत की कि एक गाना और हम सीधा किसी और वक्त में पहुंच जाते हैं, बस कुछ सुर कुछ ताल और समय ही बदल जाता है। आपके स्कूल डेज का वो कौन सा गाना था जो सुनते ही आपको अपनी क्लास, अपने फ्रेंड्स या अपनी टीनेज डेज याद आ जाते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा 5499-1294 पर। अभी के लिए मैं अपने स्कूल डेज का कुछ सुनाता हूँ फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट्स, गिव मी सम सनशाइन।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहां आ गए हैं वो घड़ी जहां हम पढ़ते हैं आपके अपने पैगाम. शुरू करते हैं इस वेरी नाइस मैसेज से. मुझे ये मैसेज पढ़ने के बाद बहुत देर तक सोचना पड़ा कि यहां पर लिखा क्या गया है. सो आई एम नानी फॉर रिधि एंड सोनाक्षी इज डैडी दादी. यानी कि ये जो हमारी सुया जी हैं ये रिधि की नानी जी हैं और सोनाक्षी के लिए दादी जी. और ये करना चाहेंगे अवनी और क्यूट वंश के लिए हैप्पी स्कूल डे टुमारो स्पेशली फॉर ऑल द टीचर्स एंड केयर टेकर्स फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कोंगोमा. थैंक यू वेरी मच सुया जी फॉर द लवली मैसेज. लेकिन लेकिन लेकिन इस मैसेज के का थोड़ा सा ब्रेन फ्रीज हुआ. अगला जो मैसेज है, हेलो, मेरा स्कूल डेज में गाना मैं और मेरा फ्रेंड्स रागिनी तेरा साथ है. तेरा साथ है इतना प्यारा, क्या बात. ये देखेंगे अगर चला सकते हैं खासकर आपके लिए और आपकी फ्रेंड रागिनी के लिए. आपने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन चला देंगे जरूर, क्यों नहीं. ये अगला मैसेज आया है, हेलो आज निखिल, आज मेरी बेटी अदिति की सालगिरह है. हम पेरेंट्स सूरज और दीपमाला की ओर से अदिति बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद और खुशियां. उन्होंने कहा है वी लव यू अदिति. हमारी तरफ से भी, RM2 टीम की तरफ से भी हम कहेंगे वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अदिति. और ये आखिरी मैसेज अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं. हेलो निखिल जी, हाउ आर यू. आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ सॉन्ग, अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर माय ब्रदर मम्मी एंड डैड एंड माय फ्रेंड प्रवेश प्लीज. सॉन्ग का नाम है सितारे फ्रॉम सोनम. सोनम जी और साथ ही जिन्होंने भी हमको मैसेज भेजा है आपके पैगामों के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया. सो द नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट स्पेशली टू सोनम जी, आपके भाई, मम्मी, डैडी, फ्रेंड प्रवेश, स्पेशली टू अदिति जी जो कि मना रहे हैं अपने सालगिरह, और अवनी, वंश, रिधि और सोनाक्षी के लिए, और सभी जो कल हमारे जो नन्हे सितारे अभी स्कूल फिर से ज्वाइन करने वाले हैं उनके नाम.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Jiha, you're right in the middle of your Sunday night and you're right in the middle of Bollywood Sizzler. अगस्त का महीना है, स्कूल के थर्ड टर्म का एक्साइटमेंट और कल से वापस वही रूटीन। लेकिन लेकिन लेकिन अभी आपके आपको कहेंगे कि मंडे जो है वो आया नहीं है अब तक। सो कीप द वीकेंड एनर्जी अलाइव फॉर लिटिल लॉन्गर। मैं हूं निखिल और अगले कुछ पल में फिर से मिलेंगे कुछ ब्यूटीफुल बॉलीवुड मेलोडीज के साथ। जी हाँ, पहले हाफ में हमने आपसे पूछा था कि कौन से मेलोडीज ऐसे होते हैं जो आपको वापस स्कूल डेज में ले जाते हैं, और इतने सारे मैसेजेस आए भाई। ये जो गाना हमने अभी अभी चलाया था ये भी किसी का रिक्वेस्ट था। ये जो गाना अब हम चलाने वाले हैं ये भी किसी का रिक्वेस्ट है, फ्रॉम द मूवी गुड बॉय बैड बॉय। शायद ये गाना आप भूल चुके होंगे लेकिन हमारे लिए तो ताज़ा है ये। दर्द दिल इन द वॉइस ऑफ जुबीन गर्ग।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: यादों के सिलसिले में हम जारी रखते हैं आपके फरमाइशें, ये खासकर पूनम जी के लिए, सीता किताबुल गम ऑफ शातो बिनागस के लिए, और साथ ही साथ श्वेता हुकुम हु वांट्स टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू हमम सुया ऑफ कुंगुमा, जिन्होंने हमें मैसेज भेजा था थोड़ी देर पहले.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: सच बताऊं तो आज का मेरा थीम था इट वाज टू हैव अ शो ऑन बैक टू स्कूल, लेकिन ये बैक टू स्कूल का अभी मीनिंग ही बदल गया है. यू सेंड सो मेनी रिक्वेस्ट, सो मेनी लवली रिक्वेस्ट, और ये हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम उनमें वापस चले जाते हैं. एक फैमिलियर सा म्यूजिक बजता है, एक इंट्रो बजता है, एंड सडनली यू आर 16 अगेन. कॉलेज के कॉरिडोर में फ्रेंड्स के साथ किसी क्रश को देख रहे हो, या एग्जाम के एक दिन पहले भी पार्टी कर रहे हो. आपके मैसेजेस ने हमें ऐसी बहुत सारी मेमोरीज दी हैं. सो लेट्स ओपन दैट मेमोरी बॉक्स अगेन एंड प्ले सम ऑफ द सॉन्ग्स दैट डिफाइंड योर टीनेज एंड कॉलेज ईयर्स. ये जो अगला गाना बजने वाला है, ये रिक्वेस्ट किया था, उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, खासकर डेडिकेट किया था, खासकर अपनी स्कूल फ्रेंड रागिनी के लिए. तेरा प्यार है इतना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, फ्रॉम द मूवी जांबाज. दिस वॉज योर स्कूल मेमोरी. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, छोड़ आए हम वो गलियां, लेकिन हमें पता है कि गलियों पर अभी भी आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आप अभी भी काम कर रहे हो तो आपको कहेंगे भूकू आज, बी सेफ प्लीज प्लीज प्लीज, और आपसे कहेंगे कि देखो रूटीन जो है वो बोरिंग लग सकता है, फिर से स्कूल या फिर काम, ट्रैफिक, होमवर्क, डिनर, स्लीप, वही खाना, वही सोना, फिर से उसी अलार्म टोन पर जागना, फिर वही साइकिल। लेकिन रूटीन के बीच में म्यूजिक एक छोटा सा एस्केप दे देता है आपको। ईयरफोन लगा लो या फिर रेडियो ऑन कर लो या फिर घर में कोई अपना फेवरेट सॉन्ग बजा दो आपका मूड बदलने के लिए। कभी कभी सिर्फ वो 3 मिनट, कभी वो 3 मिनट के सुर, 3 मिनट के ताल, 3 मिनट की आवाज, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग काफी होता है आपके लिए। कौन सा ब्यूटीफुल सॉन्ग चलाएं अभी भी आप हमें बता सकते हो 5499-1294, अपने हिसाब से आपके लिए

0: खासकर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अभी रोड पर हैं, आपको कहेंगे हल्का हल्का सा लो इस संडे शाम को विद हल्का हल्का सा ये सामान फ्रॉम द मूवी चॉकलेट.
1: Yeah. Radio Mastery.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, ये था हल्का हल्का सा नशा. हल्का हल्का लेते हैं. अभी सबने अपने अपना अपना अपनी अपनी फरमाइश तो बता दी. अभी मेरी बारी. मेरे स्कूल टाइम का एक ऐसा गाना जो मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगा. गॉड टू सी ग्रेट हो मूवी का नाम है. तुमको देखा था कभी. इफ एवर यू हैव द चांस टू लुक एट द मून. अभी देखो इस गाने के साथ कुछ और ही मजा आएगा.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: और बस संडे नाइट का सफर अब धीरे धीरे अपने एंड की तरफ आ रहा है। कल फिर से अलार्म्स बजेंगे, स्कूल बैग्स कंधों पर होंगे, क्लासरूम्स भर जाएंगे और एक नया टर्म शुरू होगा। टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स विल से ऑल द वेरी बेस्ट, टू ऑल द पेरेंट्स गुड लक। और आप सबको थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पेंड योर संडे इवनिंग विद यू। कल मंडे है लेकिन आज रात की जो मेमोरीज हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैं हूं निखिल, आई विल से गुड नाइट मॉरिशस, स्लीप वेल, ड्रीम बिग, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। और वैसे आज रात अगर आप किसी की यादों में खोए हुए हैं तो ये सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। जी हाँ, हर गाना एक एहसास होता है दोस्तों, और हर सुर एक कहानी सुनाती है। बस दिल खोल कर आप बस हमारा साथ दे दीजिए और हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए। लेकर आई है बहुत ही खूबसूरत गानों का सिलेक्शंस फॉर यू इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, रात जितनी खामोश होती है दिल की बातें उतनी ही गहरी हो जाती हैं। आज की रात बॉलीवुड के रोमांटिक मेलोडीज के नाम, जी हाँ, जो बात लफ्जों में ना हो पाए शायद एक गाना कह दे आपके दिल की बात। वैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बालकनी में चाय के साथ बैठे हुए हैं या बस अपनी दुनिया में खोए हुए हो, तो रेडियो मस्ती आपका परफेक्ट कंपेनियन है। तो चलिए प्यार के रंगों में रंग जाते हैं। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

Well guys, I really hope कि हर एक गाना आपको दिल से अच्छा लग रहा है और बस आप भी हमारे साथ गुनगुना रहे हैं। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या होता है, तो शायद उसके बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे आपके लिए, लेकिन प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता है। इस बात को याद रखना, कभी इंतजार का, कभी दुआओं का और कभी सिर्फ एक मुस्कान का नाम भी होता है प्यार। आज के रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके दिल को जरूर छू जाएंगे। बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे रेडियो मस्ती फैमिली, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, आप किसी की यादों में खोए हुए हो, कहना मुश्किल लग रहा है, तो आज का गाना उसकी जगह बोल देगा। दिल से सुनिए, क्योंकि म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलते।

रात का ये सुकून और बॉलीवुड के एवरग्रीन रोमांटिक गाने, जी हाँ, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। मैं हूँ आपका दोस्त गिनिशा, जो आपका साथ निभा रही हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन। और अगला गाना शायद आपके दिल की धड़कन बन जाए, किसको पता। हर लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होता है मेरी जान, लेकिन हर लव स्टोरी स्पेशल जरूर होती है। आज उन्हीं इमोशंस को सेलिब्रेट करते हुए, हां जी, अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके प्यार के नाम।

रात का ये सुकून और बॉलीवुड के एवरग्रीन रोमांटिक गाने, जी हाँ, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। मैं हूँ आपका दोस्त गिनिशा, जो आपका साथ निभा रही हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन। और अगला गाना शायद आपके दिल की धड़कन बन जाए, किसको पता। हर लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होता है मेरी जान, लेकिन हर लव स्टोरी स्पेशल जरूर होती है। आज उन्हीं इमोशंस को सेलिब्रेट करते हुए, हां जी, अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके प्यार के नाम।

लेट नाइट ग्रूव्स में फिर से एक बार आप सभी लोगों का म्यूजिक लवर्स का स्वागत है। जी हां दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जर्गनीशा का प्रणाम। सो अगर आप किसी को सीक्रेटली पसंद करते हैं तो हो सकता है आज का गाना आपकी तरफ से एक साइलेंट मैसेज बन जाए, किसको पता। तो चलिए जी, बस आराम से आप बैठ जाइए और अपनी यादों में खो जाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। और मैं होंगी निशा, जो बड़े प्यार से आपका साथ दे रही हूँ इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती।

रात की हवा, चांद की रोशनी और बॉलीवुड के अनमोल रोमांटिक गाने, बस इतना ही तो चाहिए एक परफेक्ट नाइट के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग रेडियो मस्ती अ पार्ट ऑफ योर नाइट। लाइफ बहुत फास्ट चलती है दोस्तों, लेकिन आज कुछ देर के लिए स्लो हो जाइए। हर नोट को महसूस कीजिए, हर लिरिक्स को दिल में उतरने दीजिए। ये वक्त सिर्फ आपका है, आपके प्यार भरे गानों का। तो चलिए, स्पेशली स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स, ये अगला नगमा आपके नाम।

प्यार में सबसे खूबसूरत चीज होती है उम्मीद और जब तक उम्मीद है तब तक हर गाना एक नई कहानी लिखता रहेगा तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अगला रोमांटिक ट्रैक सुनते हैं जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो मॉरिशस के बाहर भी होते हुए हमारा साथ दे रहे हैं दूर है लेकिन दिल के करीब हो आप थैंक यू सो मच जी अक्रॉस द ग्लोब इतने सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स इस वक्त इन खूबसूरत रोमांटिक गानों का मजा ले रहे हैं तो ऑन रेडियो मस्ती दिस वन गोज आउट टू यू

सो माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, किसी को थैंक यू कहना हो, सॉरी कहना हो, या बस आई केयर फॉर यू, आई लव यू कहना हो, तो कभी कभी एक रोमांटिक सॉन्ग सब कुछ कह देते हैं। ये गाना उन्हीं जज्बातों के नाम, वैसे हर धड़कन की अपनी एक रिदम तो होती है ना, हर दिल का अपना फेवरेट गाना होता है। देखते हैं आज की रात कौन सा सॉन्ग आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। तो ये रहा खूबसूरत सा रोमांटिक गाना रोमांटिक लवर्स के नाम।

वैसे कहते हैं कि प्यार प्यार की लैंग्वेज अलग होती है और बॉलीवुड म्यूजिक उस लैंग्वेज उस भाषा का सबसे खूबसूरत ट्रांसलेशन है। आज की रात सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के नाम। कभी कभी जिंदगी में बस एक अच्छा गाना ही काफी होता है दोस्त मूड बदलने के लिए। इसलिए फिलहाल के लिए आप स्माइल कीजिए, रिलैक्स हो जाइए और रेडियो मस्ती के साथ इस रात को यादगार बना दीजिए। वैसे आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो, ये अगला नगमा खासकर आपके लिए।

तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत रोमांटिक गानों का सिलेक्शंस? I really hope कि आप भी गुनगुना रहे हो हमारे साथ। याद रखिए दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी होता है। अपनी स्माइल को कभी मत खोना। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त यानी कि आरजे निशा, और आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती, जहाँ हर रात बनती है थोड़ी और रोमांटिक। जी हाँ दोस्तों, और फिलहाल के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो शायद इस वक्त गाड़ी में हो। सो इफ यू आर ड्राइविंग, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए। ड्राइव केयरफुली एंड एंजॉय दिस वन।

रात का ये सुकून और आपका साथ, इससे ज्यादा खूबसूरत फीलिंग और क्या हो सकती है। तो चलिए बॉलीवुड के प्यार भरे नगमों के साथ दिल की हर धड़कन को महसूस करते हैं। अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो उस एहसास को रोकना मत मेरी जान। हर याद की अपनी एक मुस्कान होती है और आज की रात उन्हीं यादों के नाम, सिर्फ रेडियो मस्ती पर।

कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी उसकी बातें और कभी सिर्फ एक गाना पूरी कहानी सुना देता है वो एक गाने के जरिए सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती जहां पे गिनीशा बड़ी शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि रोमांस अभी शुरू हुआ है और आज रात एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए जो भी हो दिल में प्यार और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहेंगे बाकी सब रेडियो मस्ती और बॉलीवुड संभाल लेंगे जी हाँ दोस्तों तो ये अगला नगमा खासकर आपके लिए और उनके लिए जो आपके दिल में बसते हैं

कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि प्यार का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन लेट नाइट कन्वर्सेशंस और रोमांटिक सॉन्ग्स का अपनी ही मैजिक होता है। तो चलिए उस मैजिक को महसूस करते हैं। वैसे अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है तो उनके लिए दिल से एक स्माइल भेजे, और अगर अभी तक कोई स्पेशल नहीं मिला तो यकीन रखे, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।

हर गाना एक पोस्टकार्ड की तरह होता है, किसी की यादों से भेजा हुआ। आज देखते हैं कौन सा गाना आपके दिल का एड्रेस ढूंढ लेता है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है जिंदगी में, और उस खामोशी को सिर्फ एक खूबसूरत मेलोडी ही समझ सकती है। ये है आपका लेट नाइट ग्रूव्स, आपके मनपसंद रोमांटिक गानों के साथ। बस यूं ही आप ही साथ देते रहिए।

चलिए जी, थैंक यू सो मच, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा साथ दिया इस खूबसूरत से शो में, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। गिनिशा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखना और बस कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।